नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि तदनुसार 11 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देशभर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभात की इस शांत बेला में आइए कुछ पल अपने मन को ईश्वर के स्मरण और सकारात्मक विचारों से जोड़ें। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के साथ आज की वंदना का शुभारंभ करते हैं। श्रोताओं, हमारे देश की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, परंपराओं और लोगों के आपसी प्रेम से है। इस मिट्टी ने हमें एकता में रहना और विविधता का सम्मान करना सिखाया है। आज की सुबह में आइए अपने देश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें।

हर शुभ शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्मरण से की जाती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और मंगल के देवता माना जाता है। उनका स्मरण हमें यह विश्वास देता है कि किसी भी नए मार्ग पर सद्बुद्धि और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए इस पावन सुबह गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं।

माँ की आराधना में शक्ति के साथ साथ ममता का भी भाव जुड़ा है। जब मन किसी कठिनाई से गुजरता है तो माँ का स्मरण हमें भीतर से मजबूत करता है। भारतीय भक्ति परंपरा में माँ को शक्ति और संरक्षण का स्वरूप माना गया है। आइए माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।

प्रभु श्री राम का नाम भारतीय भक्ति परंपरा में विश्वास और मर्यादा से जुड़ा हुआ है। राम का जीवन हमें सत्य, धैर्य और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। जब मन में विश्वास हो और उद्देश्य स्पष्ट हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। वैश्विक उष्मीकरण विषय पर केंद्रित इस चिंतन का आलेख तैयार किया है आदित्य शर्मा ने, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान की।
1: वैश्विक उष्मीकरण आज के समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसका अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना। यह समस्या केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया है। वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसी गैसें वातावरण में गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक होती है, लेकिन जब इन गैसों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव अत्यंत व्यापक और गंभीर हैं। सबसे स्पष्ट प्रभाव ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना है। आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में तेजी से बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई छोटे द्वीपीय देश अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो भविष्य में कई शहर जलमग्न हो सकते हैं। इसके अलावा मौसम के पैटर्न में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हीट वेव यानी लू अधिक तीव्र और लंबे समय तक रहने लगी है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कृषि पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि फसलें मौसम के असंतुलन के कारण नष्ट हो जाती है। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। जैव विविधता पर भी वैश्विक उष्मीकरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। कई पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि वे तेजी से बदलते पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पा रही है। समुद्री जीवन विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण नष्ट हो रही है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य भी इस समस्या से अछूता नहीं है। बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। साथ ही मच्छरों जैसे रोग फैलाने वाले जीवों की संख्या और क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है। आर्थिक दृष्टि से भी वैश्विक उष्मीकरण एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान और सूखा के कारण भारी आर्थिक नुकसान होता है। विकासशील देशों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है। इस कारण वैश्विक असमानता और बढ़ सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना है। ऊर्जा की बचत और कुशल उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण भी इस समस्या से निपटने में प्रभावी उपाय है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित रखते हैं, इसलिए वनों की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना आवश्यक है। इसके साथ ही टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना भी जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम छोटे छोटे कदम उठाकर इस समस्या को कम कर सकते हैं, जैसे बिजली की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो सामूहिक रूप से बड़ा परिवर्तन संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए सभी देशों को मिलकर इसका समाधान करना होगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन
0: श्रोताओं, ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में पशुओं में प्रसव के बाद मां की मृत्यु हो जाने पर क्या करें, इस विषय पर डॉक्टर संदीप नानावटी जानकारी दे रहे हैं।
2: खेती की बात कार्यक्रम में स्वीकार करो तुम्हारी बहन स्मिता की राम राम। भाई बहनों, और आज अपन जाना कि कदी नवजात पशु को जन्म होए और जन्म होता से उनकी माँ की मृत्यु हुई जाए तो उन नवजात के कैसे जीवित रखनो। जानकारी दी रहा है डॉक्टर संदीप नानावटी, पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से।
3: जब नवजात पशुओं की देखभाल की बात करते तो कई बार ये भी बात आती है कि जो पाले पाली होते हैं वो कभी समझ लीजिए कि प्रसूति हुई और माँ की मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से। हाँ। तो उस बच्चे को कैसे पाले, ये हमारे सामने यक्ष प्रश्न हो जाता है कि इतना बच्चा है, नवजात पशु है, माँ नहीं है, उसको कैसे पालेंगे। तो ये काम कर सकते कि जो आसपास कोई नव प्रसवित गाय या भैंस है उसका चीका ला के उसको नाल से पिला दे। अच्छा। कम से कम उसको थोड़ा तो चीका मिलेगा। हाँ, है ना। हाँ। कई बार तो क्या होता है डायरेक्ट थन से तो पिलाने नहीं देगी, वो लात मार देगी दूसरे के बच्चे को। कई बार हमारे पशुपालक भाई कर भी लेते हैं, सब पैर वेर बांध के कोई दूसरी जो गाय जनी है या भैंस जनी है उसको उससे दिला देते हैं। लेकिन कई बार नहीं होता ये, जिसको आपको कृत्रिम रूप से बर्तन के जरिए पिलाना सिखाना पड़ेगा तब आप पिला दीजिए। और एक तरीका और है कि अगर समझो ना मिले गांव में कोई ताजी जनी हुई भैंस या गाय नहीं मिली तो क्या करें, तो हम घर पे ही

0: कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल एक चीका बना लेंगे। मैं घर पे चीका बनाने की विधि आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, आपको क्या करना है, 750 ml दूध लेना है। आप चाहो तो इसको लिख भी लो, 750 ml पौन किलो लीटर दूध ले लिया आपने गाय या भैंस का, किसी भी गाय भैंस का, गाय का बच्चा है तो गाय का ले लिया और भैंस का पड़ा पड़ी है तो भैंस का ले लिया। उसमें एक अंडा मिल जाता है, अंडे को फोड़ के उसमें डाल दीजिए, ये इसका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। उसमें एक बड़ा चम्मच अरंडी का तेल और एक छोटा चम्मच मतलब 5 ml कॉड लीवर ऑयल, बाजार में मिल जाता है मछली का तेल, कॉड लीवर ऑयल की कैप्सूल मिलती है तो वो कॉड लीवर ऑयल एक छोटा चम्मच मतलब 5 से 10 ml और अरंडी का तेल 30 ml और 1.5 लीटर दूध और एक अंडा, देसी अंडा कच्चा, देसी या विदेशी जो मिल जाए, इनको सबको मिला के फेंट दें और इसे 4 खुराक दें चीके की जगह, सुबह शाम, अगले दिन सुबह और शाम, 4 दिनों तक खुराक देने से बहुत हद तक चीके की कमी को दूर कर सकते हैं, बच्चे की जान बच जाएगी।
1: अच्छा,
0: ये पशुपालक भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृत्रिम रूप से घर पे ही चीका बनाना ये आप कर सकते हैं। और अब बारी आती थी जब चीका पिला देते हैं, 5 दिन पूरे हो जाते हैं तो बच्चे को कितना दूध पिलाया जाए, तो बच्चे को दूध पिलाया जाता है जैसा मैंने बताया शरीर के वजन का 1/10 हिस्सा, मतलब जितना शरीर का वजन है उसमें आप उसका 10% ले लें, उसमें 10 का भाग लगा, जैसे अगर उसका 25 किलो है या 30 किलो है तो आपको 3 किलो देना है, 1.5 किलो दूध सुबह 1.5 किलो शाम को, या मतलब 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम को, ऐसे आपको दूध पिलाना है। अब हमारे जो नवजात पशु बच्चे हैं उनको तो किसान भाई छोड़ देते हैं गाय के पास, अब वो जितना पीता है, पीना चाहता है पी लेता है, तो चक्कर में 2.5 भी पी लेता है, 3 भी लेता है, और ज्यादा पी लेता है तो अतिसार हो जाते हैं, और कम पीता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, प्रॉपर वृद्धि नहीं होती। तो ये पशुपालक भाई को तय करना है कि 1/10 हिस्सा कैसे उसके पेट में पहुंचे, तो ये तय करने के लिए उसको अंदाज लगाना पड़ेगा कि 1 थन में से कितना दूध आता है, और जो 1 थन में से 1 लीटर आ जाता है तो 1 थन उसको दे दें, 2 थन में आ जाता है 1 लीटर तो 2 थन दे दें। इस तरह से आपको अपने उसको गाइडेंस देना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा।
1: खेती की बात में आज अपन ने जानियो कि कैसे कदी नवजात पशु ना का माँ की मृत्यु हुई जाए तो उनकी जान कैसे बचानी, और एक में जानकारी दी रहा था डॉक्टर संदीप नानावटी जी।
2: श्रोताओं, ये था आज का खेती की बातें कार्यक्रम, जिसमें आपने पशुओं में प्रसव के बाद माँ की मृत्यु हो जाने पर क्या करें इस विषय में जाना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है राजा।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा। 8:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका। आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं लाइफ साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद्र। लोक संगीत में उषा रायकवार और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर। सुगम संगीत में पूर्वी निमगांवकर की गाई रचनाएं हम आपको सुबह 9:15 और शाम 6:30 से सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत में बलवंत राय भाटी का गाया राग कलवर्धनी सुनिएगा सुबह 9:30 और विजय सरदेशमुख का गाया राग मालकौंस रात्रि 10:30 सुनवाया जाएगा।

सुबह 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर भी नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224 और इंदौर का एसडी कोड 0731। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे दिन में 11 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 दो

सिखाया जाएगा और काम की बातें में वॉशिंग मशीन का उपयोग सतर्कता से कैसे करें इस विषय में जानकारी होगी। दोपहर 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। आज का क्रम है हमारे शहर। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण होगा शाम 7:30 से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा सुनिएगा रात्रि 8:00 से। संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम चित्रगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन सुनिएगा रात्रि 10:00 से। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सम्मिलिते स्तः। एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते। मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 270 होरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिक नागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रिय पत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदं उच्च गुणवत्ता युक्तस्य उचित मूल्येन उचित समये उचित उत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मंत्री उक्तवान्। श्री गोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिक धनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 25 लक्ष कोटि रूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्ष कोटि रूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटि रूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने

0: कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा,
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
10: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
9: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की।

0: बात है, समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस बल और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। भोपाल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल नवीन भर्ती में चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों को बैज लगाए। मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन गठित करने और प्रदेश में 3 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की।
1: हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा के साथ साथ और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये 3 बटालियन बनाने की घोषणा कर। हम ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लिए बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी वर्ग से हमारा ये एक समूह, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष जारी किया।

0: अंतर्गत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी।
1: पिछले साल जब हमने विद्यार्थियों का एग्री स्टूडेंट्स का सम्मेलन किया था तो ये बात आई थी कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो पहले यूनिवर्सिटी में जाती है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में जाती है और फिर स्टूडेंट्स के पास जाते जाते बहुत समय लग जाता है और कई बार तो इतना देर से पहुंचती है कि परीक्षा ही हो जाती है। इसलिए समय पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, इसका शुभारंभ हुआ है डीबीटी के माध्यम से, सिंगल क्लिक से स्कॉलरशिप 6,080 विद्यार्थियों के खाते में पहुंची है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और परिषद की सहमति से मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद राज्य वन प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीसी के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते कल मंत्रालय में प्रदेश में मूंग खरीदी कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोषी पाए जाने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र से प्रदेश के लिए करीब 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य मिला है और करीब 3,47,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 3,42,000 किसानों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां बारिश को ले मद्देनजर करके रखी जाएं तथा 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला और राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, जलाशयों की निगरानी और राहत शिविरों की तैयारी तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समय पर चेतावनी देने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यानी 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। वे प्रदेश में निवेश के अवसरों, औद्योगिक नीतियों और निवेशक सुविधाओं की जानकारी देकर उद्योग समूह को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि, जलभराव, बाढ़, जर्जर भवन गिरने और वज्रपात जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य संभाग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कल बताया कि कंट्रोल रूम संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू करने की स्वीकृति दी है, जिनमें विदिशा जिले का शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा, शाजापुर जिले का जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर और आगरमालवा जिले का शासकीय महाविद्यालय सोयत कलां शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि संस्कृत के अध्ययन का विस्तार विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं झाबुआ में आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता से तिरंगा रैली, रंगोली और मानव श्रृंखला आयोजित की गई। राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत ढोलियावड़ में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं डिंडौरी में जिला मुख्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी, जबकि धार में नालछा विकासखंड के ग्राम जीरापुर स्थित ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर परिसर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में भारतीय साड़ी, हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 13 प्रतिभागियों ने बंगाली, महाराष्ट्रीयन, नवारी, बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी सहित विभिन्न पारंपरिक साड़ियों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल में आज से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब में राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तकनीकी मार्गदर्शन में होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 ज्यूरी सदस्य भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से साइबर जालसाजों से सावधान रहने और बिजली बिल का भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी मोबाइल नंबर से बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर भेजे जाने वाले SMS, व्हाट्सएप संदेश और फोन कॉल फर्जी हो सकते हैं। उपभोक्ता अनजान नंबर पर बिल की राशि ट्रांसफर न करें और अपना पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना दें। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर हैं, कई जगह आपदा की स्थिति बन गई है। राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल एवं होमगार्ड्स की टीमों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। होमगार्ड सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को क्षेत्रीय टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। दिनभर चले इन अभियानों के दौरान जवानों द्वारा 98 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत पहुंचाई गई। वहीं मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला और जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 2026-31 बैच की शुरुआत इंडक्शन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें 156 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आगरमालवा में भारी बारिश के चलते कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीणा ने सभी स्कूलों में आज यानी मंगलवार का अवकाश घोषित किया है। खंडवा में सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डीमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डीमर ने भोपाल के लोअर लेक में आयोजित नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में 6 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मंदसौर की समय सीमा की बैठक में कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों की पूर्व तैयारी कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। सतना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन 12 अगस्त तक संजीवनी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओं, आज फिर बादल ने अपनी महफिल सजाई है। धरती पर पड़ती अमृत की बूंदों से धरती, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब झूम उठे हैं, और इन बादलों का धन्यवाद अर्पित करते हुए हमने भी भीगे भीगे गीतों की महफिल सजा ली है। आइए आप और हम बारिश की बूंदों के साथ साथ इन मधुर गीतों की स्वर लहरियों में भीगते हैं और प्रकृति के उत्सव में भागीदार बनते हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में दो आंखें बारह हाथ फिल्म का गीत आपने सुना। गीत लिखा था भरत व्यास ने, संगीत वसंत देशमुख का था।

मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्रीमान सत्यवादी। गुलजार का लिखा हुआ गीत, दत्ताराम का संगीत।

0: में धरती धन्य धान से परिपूर्ण कर वैभवशाली बना देती है। हेमंत कुमार का गाया हुआ बीवी और मकान फिल्म का गीत आपने सुना। इसका संगीत भी हेमंत कुमार ने ही तैयार किया था और गीत लिखा था गुलजार ने।
1: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वर में प्रेम पत्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत गुलजार का लिखा हुआ था, संगीत सलिल चौधरी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: नभ से मोतियों का झरना टिप टिप हौले से बरसे, वर्षा की बूंदों का एहसास प्यासी धरती कब से तरसे, भूमि पर जल पड़ते ही मिट्टी की फैले सुरभि अनुपम, पानी से हो पुनीत मानस दिखे निसर्ग कितना हरितम।

0: आशा भोसले का गाया हुआ ये अनुपमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था कैफी आजमी ने, संगीत हेमंत कुमार का था।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना। फिल्म का नाम था अनजाना। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लो ये सावन फिर आ गया, बारिश का समा छा गया, बरखा बहार ले आया, सावन की बौछार ले आया, बारिश के फुहारे ले आया, बिखरे फूल फिर गुनगुनाएंगे, भंवरों पर

फूल मंडराएंगे, तितलियां फूलों पर इतराएंगी, बूंदें संग हवाएं भी गाएंगी, दिल में नई उमंग जगाएंगी।

बादलों से दोस्ती होने लगी, कोख धरती की हरी होने लगी। मस्त होकर ढोल बादल पीटते, बिजलियों की रोशनी होने लगी। नाचती हैं अब हवाएं झूम के, देह में भी सनसनी सी होने लगी।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये बेटा फिल्म का गीत आपने सुना। गीत आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस गीत के साथ ही आज का सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
6: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
7: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
8: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
9: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
5: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
10: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
5: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
11: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
7: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
5: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। होर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
5: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
14: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
13: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
15: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and 9 land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours. Introduced in 2014 for nationals of 43 countries, the e-visa facility has now been extended to citizens of 172 countries. It is currently available under 17 subcategories including tourist, business, medical, student, transit, cruise and mountaineering visas. The ministry said India now issues roughly 78% of its visas electronically. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
13: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. More from our correspondent.
8: The assembly Girao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated during the assembly protest. Doctors are monitoring his condition and have placed him on oxygen support. The BJP has called for a statewide bandh today, alleging excessive use of force against protesting students and reiterating its demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. Ranchi Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri appealed to people to observe today's bandh peacefully and warned that appropriate action would be taken against anyone attempting to disturb law and order or incite violence. The administration has increased security arrangements at key locations in Ranchi and appealed to all sections of society to maintain peace and cooperate with the police and district administration. Mavish Rahman, Akashwani News.
13: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 132 people were killed following a powerful 7.4 magnitude earthquake hits Western Colombia yesterday. More than 570 others have been injured. According to US Geological Survey, the epicenter of the quake was near San Jose del Palmar in the Chocó region, about 400 kilometers west of the capital, Bogotá. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. Rescue teams and local residents searched through the rubble for survivors. Colombian President Abelardo Espriella has declared an emergency to speed up funding for relief and recovery operations. The tremors were also felt in neighboring Ecuador and Panama, though no major damage was reported there. The Indian Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for Himachal Pradesh and East Rajasthan for heavy to very heavy rainfall today. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places today. Rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. The Meteorological Centre Shimla has issued a warning of heavy rainfall in mainly 9 districts of the state during the next 24 hours. A report.
10: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due to landslides at several places, while 66 transformers and 19 drinking water supply schemes have also been affected. Concerned departmental teams are working to restore these essential services at the earliest. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for rainfall in 3 districts, Kangra, Sirmaur and Mandi, during the next 24 hours. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for 6 other districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Shimla and Solan. The administration has urged people to exercise caution in view of the possibility of heavy rainfall, stay away from rivers and streams and landslide prone areas and avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
13: In Uttar Pradesh, programs related to the Har Ghar Tiranga campaign will be organized with enthusiasm in all madrasas across the state. More from our correspondent.
11: Minister for Minority Welfare Danish Ansari has directed that students and youth studying in madrasas are to be encouraged to participate in the campaign. He said that programs involving the hoisting of the national flag, singing of national anthem, patriotic activities and awareness initiatives highlighting the contributions of great freedom fighters will also be organized in madrasas of a state. Yesterday, Chief Minister Yogi Adityanath led the Tiranga Yatra in Gorakhpur district. He said that Har Ghar Tiranga campaign is a tribute to the sacrifices of freedom fighters and urge people to display the national flag at their homes with pride and respect. The nearly 2.5 kilometer long yatra started from the Nagar Nigam premises to railway station chowk with the CM undertaking the padyatra carrying the tricolor in his hand with the sentiment of nation first. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
13: A massive wave of devotion has swept through Haridwar during the Kanwar Yatra. By yesterday evening, over 4 crore 43 lakh 78 thousand devotees had departed Haridwar carrying holy Ganga water for their respective destinations. Today, on the occasion of Savan Shivratri, a large number of devotees are offering water to Lord Shiv, marking the conclusion of the Kanwar Yatra. A report.
16: On the 12th day of the Kanwar Mela, 63,60,000 devotees departed Haridwar yesterday carrying holy Ganga water for their destination. Haridwar is witnessing a heavy rush of Kanwariyas today on the occasion of Savan Shivratri. The city is witnessing a strong presence of dark Kanwariyas. Security, traffic, health and sanitation arrangements are being closely monitored at various bathing ghats, Kanwar routes and sensitive locations to ensure a safe and orderly Kanwar Yatra. Meanwhile, in the state capital Dehradun, traffic has been diverted at several places due to the movement of large number of Shiv devotees on the occasion of Savan Shivratri. The devotees who have departed Haridwar with holy Ganga water are offering it to Lord Shiva at various Shiva temples at their respective destinations today. With this year's Kanwar Yatra is also coming to an end. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
13: India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold, on the opening day. More from our correspondent.
17: The Indian contingent has secured 4 gold, 4 silver and 9 bronze medals at the championship, which began on Sunday and will conclude on August 14. Indian fencers reached the podium in all 6 individual events across the sabre, foil and épée disciplines. In the men's sabre event, Nikhil Wagh won the gold medal while Lakshay Badasar secured silver. Ashwini Arya and Leshram Moramba bagged bronze medals. In men's foil, Tejas Patil won silver and Himash Sansam secured bronze. In men's Zepe, Lokesh Vemani claimed silver while Shaurya Ashwini and Godwin Enbekes won bronze. In the women's events, Joyce Ashita clinched gold in foil with teammate Kanak Lakshmi winning silver. Prachi Lohan won gold in women's epee while Nivedya Nair and Anupriya secured bronze medals. In women's sabre, Jeffelyn bagged gold, Akhari won silver and Shreya Gupta took bronze. India will look to build on its strong opening day performance in the remaining events of the championship. Yashasvi Kiryal for Akash. News, Delhi.
13: And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
18: Thank you, Shagun. Full Vande Mataram to ring out from Red Fort for first time on Independence Day, states Hindustan Times. While the Hindu reports the song will be rendered upon the Prime Minister's arrival after he will unfold the national flag and deliver his customary address to the nation. Use power to drive I-Day celebrations, says Economic Times. Yuva Shakti or youth power will be a key theme at the upcoming Independence Day celebrations. Several young achievers, innovators, 19 Olympiad medalists and startup pros have been invited as special guests. Government ready for LS debate over protest? Shah to reply, says Rijiju, informs the Asian Age. Monsoon surplus in city, entire August rain in 10 days, the Times of India. The Delhi monsoon rainfall has turned surplus, recording 25% excess rainfall from June 1st to August 10th. The Indian Express informs physicist Deepak Dhar wins 2026 DRAC medal. The theoretical physicist from Uttar Pradesh has been named the co-recipient of DRAC medal, one of the highest honors in the field. Asiatic land population rises from 523 in 2015 to 891 in 2025, noted Bhupendra Yadav Reserve in a social media post, reports the Statesman. India's success in conserving Asiatic lion is a proud testament to the country's commitment to wildlife and biodiversity. And finally, as AI grips world, thrill of collecting vintage iconic computers growing, writes the Times of India. The paper adds the enthusiasm for the history of computers and all the stuff around it is growing. And with that, it's back to you, Shagun.
19: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए विज्ञान पत्रिका।

विज्ञान पत्रिका में आपका स्वागत है। श्रोताओं, विज्ञान को भूगोल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान के किसी सिद्धांत या तकनीक की खोज किसी भी देश में हो, उसका प्रचार प्रसार और अनुप्रयोग हमारे देश में भी होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ और प्रोफेसर एलेक्स जेफरी को इस विधा की शोध का श्रेय जाता है। लेकिन भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। श्रोताओं, आज के विज्ञान पत्रिका के अंक में हम जानेंगे कि क्यों एक माँ अपने बच्चे को गोद में बाईं ओर उठाती है। बात करेंगे मोबाइल फोन के इंसानों और जीव जंतुओं पर होने वाले दुष्प्रभावों की, और अंत में बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी के विशेष उपयोगों के बारे में।

0: कुछ आदतें मनुष्य में जन्मजात होती हैं, मसलन अंगड़ाई लेना, खाना खाना, सोना, प्रजनन एवं कुछ और। लेकिन कुछ आदतें स्वाभाविक होने के बावजूद आश्चर्यजनक भी हैं। ऐसी ही एक आदत है एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को गोद में बाईं ओर लेना। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी दुर्गेश नंदिनी चौधरी।
1: ऐसा माना जाता है कि माएं अपने बच्चों को जब गोद में उठाती हैं तो हमेशा या ज्यादातर बार बाईं ओर रखती हैं। इस बात को सही मानकर कुछ शोधकर्ता यह समझना चाहते थे कि क्या इसका कोई विशेष कारण है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया विश्वविद्यालय की जेनिम इनग्रैम और उनके साथियों ने तो यह भी देखने की कोशिश की कि क्या अन्य जानवरों में ऐसा होता है कि वे अपने शिशु को एक बाजू ही गोद में रखेंगे। इनग्रैम और उनके साथियों ने दुनिया भर के 11 जंगली जानवरों का अध्ययन किया। घोड़े, रेंडियर, हिरन, सांड, भेड़े, वॉलरस और कंगारू की दो प्रजातियां। ये जानवर अपने शिशु को गोद में तो नहीं उठाते, मगर घूमते फिरते वक्त इन्हें अपने एक बाजू में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने पाया कि जब कोई शिशु पीछे से अपनी माँ के पास आता है तो वह माँ के पास आकर इस तरह खड़ा होता है कि माँ उसके बाईं ओर हो। ऐसा 75% बार देखा गया। यह निष्कर्ष उन्होंने 175 माँ शिशु जोड़ों के 11,000 अवलोकनों के आधार पर निकाला है। यह बात मनुष्यों पर किए गए एक अध्ययन से भी मेल खाती है। उस अध्ययन में देखा गया था कि शिशु जब वयस्क के पास आते हैं तो इस तरह आते हैं कि वयस्क उनके बाईं ओर रहे। मगर यह भी देखा गया है कि जब कोई खतरा सामने हो तो माँ कोशिश करती है कि शिशु उसके बाईं ओर रहे। मनुष्यों में भी यही देखा गया है। सवाल है कि माँ शिशु के बीच दाएं बाएं बने रहने का कारण क्या हो सकता है। इनग्रैम व उनके साथियों ने इसके लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की है। उनका मत है कि शिशु को अपने एक खास बाजू पर रखने की कोशिश का कारण मस्तिष्क की रचना व कार्य में छिपा है। स्तनधारियों में मस्तिष्क का दायां गोलार्ध सामाजिक संकेतों और संबंध बनाने का काम करता है। इस गोलार्ध को बाईं आंख से संदेश मिलते हैं। इनग्रैम का मत है कि माएं अपने शिशु को बाईं ओर सीने से चिपकाकर इसलिए रखती हैं ताकि वे अपनी बाईं आंख से उसके चेहरे के हाव-भाव पर नजर रख सकें। खतरे के समय भी वे शिशुओं को बाईं ओर इसलिए रखना पसंद करती हैं और शिशु अपनी माँ को बाईं ओर रखना पसंद करते हैं ताकि वे उसकी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा अच्छे से देख सकें। मगर खतरे के समय उनकी नहीं चलती और माँ उन्हें बाईं ओर ले आती है ताकि उन्हें खतरे से महफूज रख सके। अब इस परिकल्पना में कितनी सच्चाई है यह तो आगे और अध्ययनों से पता चलेगा, किंतु आप इस बात का अवलोकन तो कर ही सकते हैं कि क्या यह मान्यता सही है कि माएं बच्चे को ज्यादातर बार अपनी बाईं ओर रखती हैं।
0: आज का युग मोबाइल फोन का युग है। जागते, सोते, उठते, बैठते हर समय केवल मोबाइल ही नजर आता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी का ज्यादातर समय मोबाइल फोन के उपयोग में बीतता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन का अधिक उपयोग हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है? ये नुकसान किस तरह का हो सकता है बता रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जीवन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चांद।
2: आज मोबाइल फोन के बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हर समय बाहर रहने और लोगों से संपर्क साधने के महत्व के कारण मोबाइल फोन का महत्व बहुत बढ़ गया है। आदत ऐसी हो गई है कि जब कॉल नहीं आता तो भी हमें लगता है कि घंटी बज रही है। यह घंटी दरअसल खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा बन गया है, किंतु यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफ़ी हद तक अपने को बचाया जा सकता है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज व्यक्ति रेडिएशन से चारों ओर से घिरा हुआ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक रिसर्च प्रयोग किए गए हैं कि मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के टावरों से निकलने वाला विकिरण हमारे शरीर में उपस्थित डीएनए, आरएनए और कोशिकाओं पर अधिक पड़ता है। शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि बढ़ते हुए रेडिएशन के कारण शहरों से तितलियां जैसे जीव जंतु गायब हो गए हैं। पक्षियों ने अपने रहने के ठिकाने मोबाइल टावर से काफ़ी दूर बना लिए हैं। रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में आने वाले उपकरणों से होने वाले रेडिएशन के खतरे के बारे में शायद ही कोई बहुत अधिक सोचता होगा, किंतु यह आवश्यक है कि आज हम जानें कि रेडिएशन के क्या हमारे दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि मोबाइल फोन से रेडिएशन से कैंसर तक हो सकता है। लोगों में इसी रेडिएशन के माध्यम से कैंसर शरीर में फैलता है। अभी वाशिंगटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर हेनरी लाई द्वारा किए गए प्रयोग से पता चला है कि रेडियो तरंगों के रेडिएशन से उन चूहों के दिमाग में सेल्स डैमेज हो गए जिन पर ये शोध किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड दीवारों या अन्य फील्ड से ढके होते हैं, किंतु रेडियोधर्मी अधिकांश दीवारों को पार कर सकते हैं। इनसे होने वाले रेडिएशन में परिवर्तन ला सकते हैं। वॉशिंग मशीन, डिशवाशर, वैक्यूम क्लीनर, लैपटॉप से लेकर साधारण से दिखने वाले हेयर ड्रायर से भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। ये बात अलग है कि किसी एक उपकरण के प्रयोग से बहुत ज़्यादा डीएनए और कोशिकाओं में परिवर्तन नहीं होता, किंतु इन तरंगों से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। रेडिएशन के कारण हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज का विकास प्रभावित हो सकता है और इसका सबसे अधिक असर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बढ़ते बच्चों पर पड़ता है। इसलिए उन लोगों को बताना यह आवश्यक है कि रेडिएशन से हम अपने को बचा कर रखें। इसके अलावा इस विषय पर अनेक शोध अभी होने और चाहिए जिससे यह पता लगे कि हमारे शरीर में उपस्थित डीएनए डैमेज कितना होता है। प्रश्न ये है कि क्या रेडिएशन से हमारे शरीर में किस तरह का परिवर्तन होता है और किस तरह की हमारे शरीर में डीएनए, आरएनए और कोशिकाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉक्टर गिरीश कुमार का कहना है कि मोबाइल रेडिएशन से शरीर में उपस्थित अनेक दिक्कतें हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख है सिर दर्द, सिर में झंझनाहट, थकान महसूस करना, चक्कर आना, डिप्रेशन, नींद न आना, आंखों में ड्राइनेस, काम में ध्यान कम लगना, कानों का बजना, सुनने में कमी, याददाश्त में कमी, पाचन में गड़बड़ी, अत्यधिक धड़कन, जोड़ों में दर्द तक हो सकता है। शोध कहते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से लंबे समय के बाद प्रजनन क्षमता में कमी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और मिसकैरेजेस जैसी भी आशंकाएं हो सकती हैं। दरअसल हमारे शरीर में 70% पानी है, मस्तिष्क में लगभग 90% तक पानी होता है। यह पानी धीरे धीरे बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और आगे चलकर सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। यहाँ तक कि बीते वर्षों में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से कैंसर तक होने की संभावना जताई गई है। ऐसा कहा गया है कि प्रतिदिन आधे घंटे या उससे ज्यादा मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करने से 8 से 10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200 से 400% बढ़ जाती है। माइक्रोवेव रेडिएशन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है जिनकी फ्रिक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, वायरलेस कंप्यूटर, कॉर्डलेस फोन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते इस्तेमाल, शरीर से नजदीकी और बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल रेडिएशन सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं। मोबाइल रेडिएशन दो प्रकार से होता है, एक मोबाइल टावर से और दूसरा मोबाइल फोन से। हेल्थ केयर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के मुताबिक मोबाइल रेडिएशन सभी के लिए नुकसानदायक है, किंतु बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीजों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बच्चों और किशोरों को मोबाइल पर ज्यादा बतियाना नहीं चाहिए और विशेष पर हैंडसेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सिर और मोबाइल के बीच की दूरी बनी रहे। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। प्रश्न है कि मोबाइल टावर या फोन किससे नुकसान अधिक होता है। डॉक्टर गिरीश कुमार के मुताबिक मोबाइल फोन हमारे ज्यादा करीब होता है, इसलिए उससे नुकसान ज्यादा होता है, किंतु ज्यादा परेशानी मोबाइल टावर से होती है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते, जबकि टावर लगातार 24 घंटे 12 महीने वर्षों तक रेडिएशन फैलाते हैं। मोबाइल पर अगर हम घंटा भर बात करते हैं तो उससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए हमें 23 घंटे मिलते हैं, जिसको हम रिपेयर मैकेनिज्म कहते हैं। जबकि टावर के पास रहने वाले व्यक्ति और पक्षी और अन्य जीव जंतु लगातार निकलने वाली तरंगों की गिरफ्त में रहते हैं। अगर घर के सामने टावर लगा है तो उसमें रहने वाले लोगों की 2-3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याएं प्रारंभ हो सकती हैं। ऐसा पाया गया है कि जिन एरियाज में मोबाइल टावर और उनकी फ्रिक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, वहां कैंसर होने की संभावना 300-400% तक अधिक हो जाती है। फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला ने सिरदर्द और सेहत से जुड़ी समस्या

0: पर अपने घर के आसपास के 9 मोबाइल टावर को हटवाया। उन्होंने वीडियो फिल्म द्वारा मोबाइल रेडिएशन के प्रति जनता को आगाह भी किया है। मोबाइल टावर के 300 मीटर एरिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है। एंटीना के सामने वाले हिस्से में सबसे ज्यादा तरंगे निकलती हैं। जाहिर है सामने की ओर ही नुकसान भी ज्यादा होता है। इसी तरह मोबाइल से दूरी भी बहुत अहम है। टावर के 1 मीटर के एरिया में 100 गुना ज्यादा रेडिएशन होता है। टावर पर जितने ज्यादा एंटीना लगे होंगे रेडिएशन भी उतना ज्यादा होगा। आंकड़े बताते हैं कि ये पाया गया कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके स्पर्म की संख्या में बहुत अधिक कमी पाई गई। जर्मनी में हुई रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रांसमीटर एंटेना के 400 मीटर के एरिया में रह रहे हैं उनमें कैंसर होने की आशंका 3 से 4 गुना ज्यादा पाई गई। केरल में की गई एक रिसर्च के अनुसार सेलफोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की कॉमर्शियल पॉपुलेशन 60% तक कमी पाई गई। सेलफोन टावरों के पास जिन गोरैयों ने अंडे दिए 30 दिन के बाद भी उनमें से बच्चे नहीं निकले, जबकि आमतौर पर 10 से 14 दिन में बच्चे निकल आते हैं। इससे साबित होता है कि मोबाइल टावर्स से निकली फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने चूजों को प्रभावित किया। यह इस ओर इशारा करती है कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क पर मोबाइल टावर का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हम मोबाइल टावर से और मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव से अपने को बचाकर रख सकते हैं, बशर्ते कि हम कुछ सावधानियां बरतें। उन सावधानियों में से एक प्रमुख है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी के समीप अपना निवास स्थान ना बनाएं। मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए अन्य उपायों में एंटीना की पावर कम करने के लिए कहा जा सकता है, घर के समीप यदि टावर है तो घर की खिड़की दरवाजे बंद कर रखने चाहिए। घर की खिड़कियों पर खासतौर की फिल्म लगा सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशन ग्लास के द्वारा ही हमारे घरों में आता है और शरीर में प्रवेश करता है। स्पीकर पर बात करना कितना मददगार है इस पर अनेक प्रकार के डिबेट हुई हैं। मोबाइल शरीर से जितना दूर रहेगा उतना नुकसान कम होगा, इसलिए फोन को शरीर से दूर रखें। और अनेक फोन्स में स्मार्टफोन में इस तरह की डिवाइस दी गई हैं जहां पर कि स्मार्टफोन द्वारा स्पीकर फोन से अपने को रेडिएशन से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। कुछ लोग रात्रि में सोते समय भी मोबाइल फोन तकिए के नीचे रखकर सोते हैं जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के मस्तिष्क पर डायरेक्ट रेडिएशन का प्रभाव रहता है। जेब में मोबाइल रखना भी दिल के लिए नुकसानदायक है। यदि पेसमेकर लगा है तो किसी भी हालत में मोबाइल जेब में ना रखें। पैंट की पॉकेट में या जींस की पॉकेट में लगातार मोबाइल रखने से पर्म्स की संख्या कम पाई गई है, ऐसा अनेक शोधों में पाया गया है।
1: श्रोताओ, विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जारी है, मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
1: और इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका में। श्रोताओ, जब से नैनो टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है तब से अब तक मनुष्य का जीवन ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा या कुछ और। हर क्षेत्र नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से उन्नत और उपयोगी हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से नए नए क्षेत्रों में उपयोगी हो रहा है बता रही हैं हमारी सहयोगी दुर्गेश नंदिनी चौधरी और प्रीति जोशी।
3: अब वो दिन दूर नहीं जब नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए जा सकेंगे, अधिक स्वच्छ जल उपलब्ध किया जा सकेगा और बेहतर जीवन यापन किया जा सकेगा। ऐसा अनुमान है कि नैनो के दम पर इस सदी के मध्य तक पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। अब तो बड़े से बड़े काम भी बेहद छोटे उपकरण कर देंगे। दरअसल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की क्रांतिकारी खोज ही नैनो टेक्नोलॉजी है। एक नैनो एक मीटर का अरबवां भाग होता है। मोटे तौर पर कहें तो मानव के बाल का ये 80,000वां भाग होता है। आने वाले समय में नैनो क्रांति आने वाली है। अभी तक परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता रहा है, मगर नैनो उससे भी सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्मतम भाग को लेकर हल्की मगर मजबूत वस्तुओं का निर्माण किया जा सकेगा। इससे चमत्कारिक उपकरण तैयार होंगे जो आश्चर्यजनक होंगे। अब ऐसे नैनो रोबोट तैयार होंगे जो हृदय के लिए खतरा बनी हुई धमनियों को खोलते चले जाएंगे। ऐसे मिनी माइक्रोचिप जो बड़ी मात्रा में सूचनाएं भंडारित करेंगी। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी की दुनिया बदल जाएगी। दरअसल नैनो तकनीक जो दिन दुनी रात चौगुनी विकसित हो रही है, कोई बहुत नई तकनीक नहीं है। 50 के दशक से ही इसकी सैद्धांतिक चर्चा होती रही है, लेकिन पिछले दशक से ही इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रगति हुई। नैनो तकनीकी के सिद्धांतों का पहला प्रयोग कैलटेक में 29 दिसंबर 1959 अमेरिकन फिजिकल एसोसिएशन की बैठक के दौरान रिचर्ड फाइनमैन के व्याख्यान में हुआ था। फाइनमैन ने एक विधि का उल्लेख किया जिसमें एकल अणुओं और अणुकणिकाओं के प्रकलन हेतु सूक्ष्म यंत्रों को बनाने का सुझाव था। उन्होंने इस दौरान गुरुत्वाकर्षण के घटते प्रभाव और पृष्ठ तनाव और वंडरवॉल आकर्षण की बढ़ती प्रमुखता का उल्लेख किया। नैनो तकनीक शब्द को गढ़ने का श्रेय टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोरियो तानीगुची को जाता है। नैनो तकनीक जो 50 वर्ष पूर्व मात्र एक सिद्धांत हुआ करती थी, लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान, सेना और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो रही है। अगले कुछ दशकों में नैनो तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के द्वार खुलने की संभावना है। दरअसल जब सामान्य जन नैनो तकनीक के बारे में कल्पना करता है तो उसे स्टार ट्रेक की याद आती है, जिसमें छोटे छोटे रोबोट शरीर में प्रवेश करते हैं जहां एक सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हालांकि ये कुछ हद तक सत्य है, लेकिन अब यह मात्र छोटे छोटे रोबोट तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब तो ये मुख्य धारा से जुड़ने वाली तकनीक नैनो से जुड़ जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसके अनुप्रयोग होने लगेंगे। सैनिक व्यवस्था में इनकी सहायता से सीमा पर सिपाही के घाव शीघ्र भर सकेंगे, उनमें अधिक तेजी लाई जा सकेगी और वे लंबे समय तक बिना थके वे दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। वे इसकी सहायता से अपने शस्त्रों को बेहतर बना सकेंगे।
4: ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ ही वर्षों में इस तकनीक द्वारा उत्पन्न उत्पादों द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान होने वाला है। अर्थात इस नैनो उद्योग में 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के सीधे द्वार खुलेंगे और इससे 3 गुने लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत संभावनाएं हैं। इसकी सहायता से चंद्रमा पर बेस बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्वयं मरम्मत करने की क्षमता रखने वाले स्पेस स्टेशन और उपग्रह बनेंगे। इससे स्पेस शटल के साथ कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी और किसी बुरी स्थिति का आभास होते ही नैनो तकनीक से बना रोबोट स्वतः ही दुर्घटनाओं और मृत्यु की रोकथाम कर सकेगा। नैनो तकनीक के अनुप्रयोग के ये मात्र कुछ उदाहरण हैं जो देखने सुनने में परिकथाओं जैसे ही लगते हैं, लेकिन अब यह सच में होगा। जैसे कि कुछ 100 वर्ष पूर्व आज की उपलब्ध आधुनिक दूर संचार एवं मोबाइल तकनीक भी ऐसी ही लगती थी जो आज हकीकत है। अब तो वैज्ञानिक नैनो मोबाइल बनाने की तैयारी में है। नैनो तकनीक आधारित मोबाइल अत्यंत संवेदी, सूचना से भरपूर, अनेक फीचर वाले तो होंगे ही, साथ ही इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। इस दिशा में शोध जारी है।
3: आज चिकित्सा जगत में इलाज के लिए हिट एंड ट्रायल पद्धति है, अर्थात अनुमान के आधार पर रोग की दवा दी जाती है, लेकिन अब नैनो पद्धति द्वारा दवा सही ठिकाने पर पहुंचेगी। इस दिशा में तेल अवीव विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। रिपोर्ट अनुसार मात्र एक परमाणु की मोटाई का एक ऐसा नैनोकण आधारित नैनो रोबो तैयार कर लिया गया है जो स्टील की तरह मजबूत है और रबड़ की तरह एकदम लचीला। तेल अवीव विश्वविद्यालय के रिसर्च एंड इम्यूनोलॉजी विभाग में कार्यरत शोधकर्ता प्रोफेसर डैन पियर के अनुसार ये मिनी सबमरीन शरीर के कोने कोने की

0: उपस्थित डीएनए और प्रोटीन से संपर्क कर पाए। नैनो कणों ने ये सपना साकार कर दिखाया है। इसके आधार पर कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को बेहद प्रारंभिक अवस्था में पकड़ पाना संभव होगा। इसके बाद नैनो कणों के सहारे ही कैंसर कोशिका तक दवा पहुंचाना संभव हो जाएगा। इससे अन्य कोशिकाएं प्रभावित नहीं होंगी।
1: स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जैविक व औद्योगिक क्षेत्रों में नैनो तकनीक की उपयोगिता पहले से काफी बढ़ी है, लेकिन कृषि की सूरत बदलने में इसकी संभावित शक्ति की जानकारी अभी लोगों को नहीं है। हकीकत तो यह है कि नैनो तकनीक के जरिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति को बरकरार रखने के साथ साथ फाइबर, ईंधन और अन्य कृषि उत्पादों की भी मांग पूरी की जा सकती है। दरअसल भारत में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ देर से शुरू हुआ, इस वजह से यहाँ इस तकनीक का फायदा कृषि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में नहीं उठाया जा सका। लेकिन अब कृषि वैज्ञानिक नैनो तकनीक के मामले में सतर्क हैं और ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहते। देश के कुछ कृषि विश्वविद्यालयों में पहले ही नैनो तकनीक से जुड़े कोर्स और रिसर्च संबंधी अभियान शुरू हो चुके हैं। खास तौर से जीन की मदद से अच्छी क्वालिटी के उत्पादों के विकास में बायोटेक्नोलॉजी अहम भूमिका अदा कर रही है। हालांकि इस तकनीक की पूरक नैनो टेक्नोलॉजी इस क्वालिटी को बढ़ाने में और कारगर रोल निभाने को तैयार नजर आ रही है। जैविक कणों और कोशिकाओं के बेहतर इस्तेमाल में यह तकनीक काफी कारगर साबित हो सकती है।
0: कृत्रिम अंग नैनो तकनीक से बनाए जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे होगा? किसी भी पदार्थ को परमाणुविक पैमाने पर नैनो स्केल पर नियंत्रित ढंग से जोड़ तोड़ कर अपने इच्छा अनुसार परिवर्तित करने की विद्या का ही नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा नैनो असेंबलर्स की रचना कर जो नैनो रेप्लिकेटर का कार्य करें, इच्छित वस्तु को परमाणुओं से बनाया जा सकता है। परमाणुओं की प्रतिलिपि तैयार कर किसी भी इच्छित वस्तु को बनाया जा सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। यहाँ तक कि मानव शरीर भी। लगभग 44 वर्ष पूर्व रिचर्ड फाइनमैन ने इस अवधारणा का सुझाव दिया था और 1974 में नारियो तानीगुची ने इसका नामकरण किया। 1990 में IBM के अनुसंधानकर्ताओं ने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक यंत्र द्वारा जैनान तत्व में 35 परमाणुओं को निकल के साथ क्रिस्टल पर एक एक कर व्यवस्थित कर IBM शब्द लिखने में सफलता पाई थी। नासा के वैज्ञानिकों ने 1997 में सुपर कंप्यूटर के द्वारा बेंजीन के अणुओं को कार्बन के परमाणुओं से बने किसी सामान्य अणु के आकार के अति सूक्ष्म नैनो ट्यूब की बाहरी सतह पर जोड़कर आणविक आकार के यंत्र निर्माण के मिथ्याभासी अनुरूपण का दावा किया। भविष्य में इसका उपयोग मैटर कंपाइलर जैसे अति सूक्ष्म यंत्र के निर्माण में हो सकता है। इन मशीनों को कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम कर प्राकृतिक गैस जैसे कच्चे माल के परमाणुओं को एक एक कर फिर से व्यवस्थित कर किसी मशीन या बड़े हिस्से को निर्मित किया जा सकता है।
1: नैनो तकनीक के व्यापक संभावित उपयोगों के दावों के कारण कई चिंताओं को भी व्यक्त किया जा रहा है। नैनो तकनीकी उद्यमी और वैज्ञानिकों द्वारा दुरुपयोग को जन्म दे सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के डर से नैनो पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन पर जहां शासन के नियंत्रण की अपेक्षा की जा रही है, वहां इन नियंत्रणों से इस अनुसंधान पर प्रोत्साहन देने की राय भी दी जा रही है। डर इस बात का है कि इस पद्धति से बनी दवा या क्रीम शरीर के कुछ अभेद्य तंत्रों को भी भेद कर हर चीज को ध्वस्त न कर दें, कहीं डीएनए को भेद न दें या ब्लड ब्रेन बैरियर नामक उस चीज को खत्म न कर दें जिसके जरिए मस्तिष्क और खून के बीच बनाई गई नाजुक सी सीमा जो अब तक की दवाओं के लिए अभेद्य है। खान पान और दवाओं में इस तकनीक के आने से जहां प्रसन्न होने वाले व्यक्ति बहुत हैं, वहीं वैज्ञानिकों और पर्यावरण का ख्याल रखने वालों को इसकी चिंता भी है। नैनो दुनिया का सफर सुहाना तो है, लेकिन इसमें खतरे भी अनेक हैं। कहीं इसका इस्तेमाल आतंकी ना करने लगे, इसलिए वैज्ञानिकों को सावधान रहना होगा।
2: तो श्रोताओं, ये था विज्ञान पत्रिका का आज का हमारा अंक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। विज्ञान पत्रिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इन

और पिन 452001। विज्ञान पत्रिका का हमारा अगला कार्यक्रम होगा अगले महीने के दूसरे मंगलवार को यानी 10 अप्रैल को रात 9:30 बजे। अब आज्ञा दीजिए ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की।
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओं, वक्त है लोक संगीत का। आज हम आपको उषा रायकवार और साथियों के गाए मालवी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

लोक संगीत में आज आपने उषा रायकवार और साथियों के गाए मालवी लोकगीतों का आनंद लिया। लीजिए श्रोताओं, सुगम संगीत में आज हम आपको पूर्वी निमगांवकर की गायी रचनाएं सुनवा रहे हैं।

पूर्वी नीम गांवकर की आवाज में महादेवी वर्मा की रचना अभी आप सुन रहे थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संत मीराबाई की रचना, स्वर एक बार फिर पूर्वी नीम गांवकर के।

सुगम संगीत में अभी आपने पूर्वी नीमगांवकर की गायी रचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए बलवंत राय भट्ट का ख्याल गायन। आज आप सुनेंगे राग कलावर्धिनी। विलंबित और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने पंडित बलवंत राय भट्ट का राग कलावर्धिनी में ख्याल गायन सुना। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।

0: बाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिंगरौली जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने बीते दिनों बैठक ली। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी और पूरी गरिमा के साथ आयोजित किया जाए। इस अभियान के दौरान तिरंगा रैलियों सहित विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ा जाए। उन्होंने जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने उपखंड अधिकारियों और SDOP पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तिरंगा रैली के समय और मार्ग निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय मुख्य तिरंगा रैली 14 अगस्त को चून कुमारी स्टेडियम नगर निगम क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयुक्त नगर पालिक निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विकासखंड स्तर पर आज जियावन और 13 अगस्त को चितरंगी और बरगवा में तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरवाह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदन, स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। सिंगरौली जिले में ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम सभा और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं जिले में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी मिल रही हैं। इसी श्रृंखला में चितरंगी के सामुदायिक भवन में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास जनता की वास्तविक सहभागिता और ग्राम सभा की सहमति से ही होना चाहिए। NCL के केंद्रीय चिकित्सालय सिंगरौली और NST जैन सामुदायिक केंद्र मोरवा में मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र रोग से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं दी। लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी इस मौके पर वितरित की गई। करीब 150 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। नगर निगम सिंगरौली की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र रेहड़ी पटरी और फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वार्ड क्रमांक 18 स्थित आवासीय परिसर केंद्रीय कर्मशाला जयंत के समीप एक विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका नियमानुसार परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चितरंगी पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 10,40,000 रुपए बताई गई है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सियाश KM और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 6 आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सिंगरौली में प्रशासन ने विद्यालयों की व्यवस्थाओं और बच्चों की सुविधाओं को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कलेक्टर गौरव बैनल ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धि कला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में बच्चों से सफाई कार्य कराए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में परिसर की साफ सफाई अनिवार्य रूप से वॉश ऑन व्हील के माध्यम से सफाई मित्रों द्वारा ही कराई जाए। कक्षाओं में लगाए गए स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड बंद पाए जाने पर भी कलेक्टर ने असंतोष जताया और उन्हें शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शासकीय मेडिकल कॉलेज सिंगरौली के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने की पहल की गई है। इस मेडिकल कॉलेज परिसर में एक आधुनिक एक्रेलिक बास्केटबॉल कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बिलियर्ड्स कक्ष, 2 टेबल टेनिस टेबल और 3 बैडमिंटन कोर्ट विकसित किए जाएंगे।

0: जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। गीत सागर सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन।
2: गीत सागर।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नोट कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा।
0: जी,
1: आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा फोन लग गया।
0: जी जी, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी, मैं फूलचंद पाल, मैं छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, आप बताएं पहले गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी जी बिल्कुल, मैं आपसे सबसे पहले आपकी शुभ नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मेरा नाम शालिनी है।
1: शालिनी, बहुत बहुत नमस्कार आपको।
0: नमस्कार
1: जी, फिल्म का नाम है अमीरी गरीबी।
0: जी जी,
1: और गीत के बोले कि ओ मेरी सासो ओ मेरे साले, बीबी करो मेरी मेरे हवाले।
0: जी, आपने बहुत अलग गीत चुना है। और फूलचंद जी, ये गीत कैसे याद आया आज?
1: जी, मैं बता दूं आपको शालिनी जी कि मैं बहुत ही जो अमीरी गरीबी है, बीबी हो तो ऐसी है, बहुत सारी फिल्में हैं जो 19 की फिल्में बनी हैं जो।
0: जी जी
1: जी, मैं बहुत शौकीन हूँ इन फिल्मों का। और ये गाना मुझे 1990 में मैंने देख सुना था आकाशवाणी, अपने यहाँ छतरपुर आकाशवाणी से।
0: अच्छा अच्छा।
1: और बहुत पहले मैं आपको बता दूं कि टाकी चलती थी शहरों में, अब तो टाकी बंद हो गई है। तो टाकीजों में मैंने फिल्में देखी हैं, तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अमीरी गरीबी का एक लेखा जोखा है। जो लड़का वाले हैं वो गरीब हैं और लड़की वाले अमीर हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो छोटे में पहले शादी हो जाती थी, तो क्या है कि जब उन्होंने देखा मैं तो काफी बड़े हुआ है, जब मैंने जो शादी के बाद जब दूसरा साल होता है दुरागमन होता है, तो उन्होंने क्या किया, लड़का लड़की वालों ने देखा कि ये तो गरीब है तो इनके हानि लड़की को भेजना है, तो उन्होंने जो है दूसरी जगह भेजने का फैसला कर लिया।
0: अच्छा।
1: तो लड़का वाला बोला कि भाई देखिए क्या है कि मेरी शादी हो गई है, मुझे मेरी पत्नी मेरे पास पहुंचाओ, नहीं तो जो है अच्छा नहीं होगा।
0: अच्छा।
1: और लड़के वाले ने जो है पुलिस वालों को बुलवा कर जो

0: अपनी अपनी बीबी को अपने पास ले आए और उसने कहा था कि वो मेरी सास हो, मेरे साले, बीबी करो मेरी, मेरी हवाली।
1: चले, क्या बात है, बहुत अच्छा गीत, और आपने उसके पीछे की कहानी भी हमें बताई है, तो अब देर न करते हुए आपका गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार शालिनी जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: धन्यवाद, हमें भी बहुत खुशी होती है जब नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं।
0: और शालिनी जी, कभी खजुराहो आइए आप घूमने के लिए, बहुत अच्छे मंदिर बने खजुराहो में।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: हाँ आइए, आपका स्वागत है।
1: जी जी धन्यवाद फूलचंद जी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
0: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं उर्मिला बोल रही हूँ। खाना मिल गया क्या? छठ
0: कौन सा गाना सुनना चाहती हैं बताएं।
1: छठ भैया पे बड़े भैया, आज बनूंगा मैं किसी के संग।
0: फिल्म का नाम पता है आपको? आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, बताएं फिल्म का नाम पता है आपको?
1: हाँ, साफ
0: बताएं,
1: साफ फिल्म, हम साफ साफ फिल्म का
0: हम साथ
1: नाम
0: साथ
1: है।
0: हैं फिल्म का गीत है ये। जी, ये
1: हाँ,
0: गीत हम आपको ज़रूर
1: चट
0: सुनवाएंगे। बताइए अपने बारे में।
1: हाँ,
0: ये गीत किसकी पसंद है?
1: छोटे लड़के को पसंद है।
0: छोटी
1: अभी बात
0: लड़की
1: कर रही
0: कौन
1: थी,
0: से बात करवाइए?
1: अभी बात करी ना वो लड़की।
0: हाँ जी, बात करवाइए।
1: वो बात करवाए बोल रहे। हेलो,
0: हेलो, ये गीत क्यों सुनना चाहती हैं? पहले अपना नाम बताएं।
1: रेडियो से
0: रेडियो से सुनी थी इसलिए सुनना चाहती हैं। अपना नाम तो बताइए।
1: सुनी
0: पल्लवी? पल्लवी के घर किसी
1: थी।
0: की शादी है क्या? हाँ जी, किसकी शादी है? आपके भाई की शादी है? अच्छा, उसके लिए गाना सुनना चाहती हैं। और पल्लवी डांस करती है? डांस करती, डांस करने का शौक है। ये गाना बजेगा रेडियो से तो डांस करेंगी। चलिए फिर हम आपको सुनवा देते हैं ये गीत। सुनिए अपने रेडियो सेट पर और खूब डांस कीजिए। ओके।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन, परम आदरणीय दीदी जी, करता हूँ आपको सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताएं कौन सा गीत सुनेंगे सबसे पहले, फिर हम बात करते हैं।
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शिक्षा, यशोदास साहब ने गीत को गाया है
0: जी।
1: तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, बहुत ही सुंदर प्यारा सुला गीत, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ एमएच हॉटलाइन पर।
0: जी, अब बताएं मथुरा की क्या हाल है?
1: दीदी मथुरा में तो इस वक्त हल्की हल्की धूप है, हल्के हल्के बादल हैं और हवाओं में गुनगुनाहट है, लेकिन गर्माहट नहीं है और तापमान का जहां तक सवाल है 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है इस वक्त।
0: अच्छा, और इस साल बारिश कैसी है?
1: दीदी इस साल बारिश बहुत कम हुई है अपेक्षाकृत पिछले सालों के।
0: अच्छा, और शारदा प्रताप सिंह जी आप खेती बाड़ी का काम करते हैं?
1: नहीं दीदी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं MPEB मतलब विद्युत विभाग में
0: जी
1: क्लास
0: जी
1: वन गजेटेड ऑफिसर हुआ करता था और
0: अच्छा
1: रिटायर होने के पश्चात मैं आकाशवाणी

0: और रेडियो से जुड़ गया हूँ और रेडियो मेरा एक अच्छा सच्चा और अच्छा साथी है।
1: जी बहुत अच्छी बात है, देखिए आपने रेडियो को अपना साथी बनाया है और निश्चित रूप से आपका मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छी वाइब्स, अच्छी ऊर्जा भी रेडियो के माध्यम से मिलती है।
0: जी हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, जैसे हमें कैसे बोलना चाहिए, किस
1: जी
0: सुनते सुनते हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो गया है। आप लोगों से वार्तालाप करने का जब सौभाग्य प्राप्त होता है
1: जी
0: और ये हमारे जो शिक्षा है, सूचना है, समाचार है, ये सब हमें मिलता रहता है मनोरंजन के साथ साथ में।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो शारदा प्रताप प्रजापति जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: क्रांति फिल्म का।
0: क्रांति फिल्म का कौन सा गीत?
1: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी
0: जी।
1: बारिश कही है इसमें गाना भी।
0: अच्छा, तो आपको सुनवाए देते हैं आपकी पसंद का गीत। अनोखे सिंह जी, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी
1: शालिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: जी जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: अनोखा दान फिल्म का गीत है लता जी के आवाज में, मत भरी ये हवाएं।
0: जी जी बारिश से संबंधित गीत है ये।
1: जी और मौसम भी बारिश हो रही है अभी तो।
0: अच्छा उधर बारिश अच्छी है धर्मपुरी।
1: धर्मपुरी भी अच्छी सुबह से ही बारिश हो रही है। जहाँ मेरी ड्यूटी 8 किलोमीटर दूर ग्रामीण है यहाँ भी बारिश हो रही है।
0: अच्छा अच्छा
1: और बच्चे तो नहीं इसके बराबर है ही नहीं, आए ही नहीं क्योंकि बारिश ज्यादा ही हो रही है।
0: अच्छा बच्चों को
1: सुबह
0: छुट्टी
1: से हो रही
0: मारने का
1: बारिश।
0: मौका मिल गया।
1: बिल्कुल भैया अच्छा मौका मिला बच्चों को। वैसे भी शासन के निर्देश है मैडम कि अगर बारिश हुई तो नाले पड़ते हैं बच्चों को, दूर से आते हैं 2-3 किलोमीटर तो
0: जी
1: बच्चों को स्कूल ना आने दें।
0: हाँ हाँ वो उनकी
1: तो
0: सुरक्षा की
1: ऐसा
0: दृष्टि से भी जरूरी हो जाता है।
1: जरूरी तो ऐसा हमने बच्चों को बोल रखा है जब ज्यादा ही बारिश हो तो ना आए। जी
0: जी चलिए मौसम का आनंद लेते हुए आपका ये गीत जो बहुत कम सुना जाता है सुनवा रहे हैं सभी श्रोताओं को और आप भी
1: जी
0: सुनिए।
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत खूबसूरत गीत है शालिनी जी।
0: जी जी सुनिए रेडियो सेट पर और हम भी इसका आनंद लेते हैं।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अनोखन दास फिल्म का गाना सुनना है मुझे,
0: गीत के बोल
1: मौसम आशिकाना है।
0: जी। बहुत अच्छा गीत है, धुन भी अच्छी है और मौसम भी
1: जी
0: सुनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो चलिए आपके साथ साथ सभी को सुनवाए देते हैं ये गीत। धन्यवाद सूर्य प्रताप जी फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद मैम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हाँ, अरे शालिनी जी, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। बहुत खुशी हो रही है आज, कौन
0: बहुत
1: लग गया
0: खुशी हो रही है हमें भी। बताएं अपना
1: जी।
0: नाम और गाने के बोल बताएं, कौन सा गीत सुनना
1: हम
0: चाहते हैं?
1: रमेश मालविया बोल रहे हैं, इंदिरा नगर चौराहे उज्जैन से।
0: जी,
1: शालिनी जी, और 15 अगस्त की आकाशवाणी परिवार को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो,
0: जी आप सभी को
1: और
0: बधाई, सभी श्रोताओं
1: श्रोताओं
0: को
1: को भी
0: बधाई।
1: मैं शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त की।
0: जी,
1: और गाने के जो बोल हैं, देश, फिल्म का नाम है देश प्रेमी, तो
0: जी
1: गाने के बोल हैं, नफरत लालच का खंजर फेंक, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
0: क्या बात है, आपने 15 अगस्त अभी से मना लिया।
1: जी बिल्कुल, अब कॉल आज लग गया है, अब हमको मालूम है कि 15 दिन या 1 महीने बाद कॉल लगाना है हमको।
0: जी, बहुत सही बात है और आप इस चीज़ का
1: शालिनी
0: ध्यान
1: जी,
0: रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, और सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि जब
0: जी
1: कॉल लग जाए तो फिर 15-20 दिन के बाद आप अपना कॉल लगाइए। जो
0: जी
1: नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं आकाशवाणी से, क्या
0: हाँ
1: उनको
0: जी,
1: भी मौका मिले।
0: बहुत सही बात कही आपने। तो
1: और मैं अपने आकाशवाणी के द्वारा हमारे लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ा वाले जो है, बहुत
0: जी
1: अच्छे श्रोता है आकाशवाणी के जी।
0: जी जी जी जी आप उनके साथ ही हैं और आप
1: जी
0: फोन
1: जी
0: लगा रहे हैं, अदरवाइज वही फोन लगाते रहते हैं। आप
1: जी जी
0: लगा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, अच्छा लगा, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत
1: और
0: रमेश मालवीय जी।
1: आकाशवाणी तो मेरा एक ऐसा है शालिनी जी, कि
0: जी
1: सुबह 6 बजे चालू हो जाता है ये, क्या सुबह 6 बजे समाचार होते हैं, इसके बाद अपना भक्ति का जो
0: वंदना
1: प्रोग्राम आता है
0: कार्यक्रम।
1: भजनों का,
0: जी,
1: वो प्रोग्राम चालू हो जाता है, किसान भाइयों की जुड़ी हुई खेती की बातें, सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं ये 3 बजे तक।
0: अच्छा
1: हाँ, और फिर 5 बजे फिर चालू हो जाता है।
0: जी, मतलब आप पूरे समय रेडियो सुनते हैं और
1: जी,
0: आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं ज्यादातर।
1: आकाशवाणी इंदौर, भोपाल के प्रोग्राम भी आते हैं, वो भी
0: जी,
1: सुनते हैं, भोपाल आकाशवाणी के भी।
0: और अब तो उज्जैन आकाशवाणी भी शुरू हो गया है, वहाँ के
1: जी
0: प्रोग्राम भी
1: हाँ,
0: सुनते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को, क्या उनके उससे ये आकाशवाणी उज्जैन चालू हो गया है। यहाँ
0: जी
1: भी हमको लगती रहती है, उज्जैन में भी बात
0: अच्छा,
1: होती रहती है आकाशवाणी में।
0: जी,
1: और रेडियो तो एक ऐसा माध्यम है, नहीं, हम सन 75 से जुड़े हैं इससे,
0: अच्छा
1: हमारे डैडी भी जो थे वो रेडियो ही एक साधन था
0: जी
1: मनोरंजन का,
0: जी जी जी
1: दूर विदेश की समाचार हमारे

0: समाचार ये सारी चीजें मिलती थी रेडियो के माध्यम से।
1: जी जी जी
0: हाँ, तो रेडियो तो हमारा एक परिवार का सदस्य है बिल्कुल, इससे हमको बहुत ज्ञान भी मिलता है। क्या
1: जी जी,
0: वो बोलने चालने का सारा तौर तरीका, और आप लोग आकाशवाणी पे जो बैठते हैं, एक मेरे आकाशवाणी में बहुत पसंदीदा जो आर्टिस्ट हैं आपके मुकाम सिंह चौहान जी,
1: जी
0: क्या जो उत्तर देते हैं सवालों के,
1: जी पत्र उत्तर कार्यक्रम में,
0: जी जी जी जी जी
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया है।
1: तो चलिए रमेश जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद आपको फोन करने के लिए, धन्यवाद।
2: नफरत

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: जी हेलो।
0: हेलो,
1: जी नमस्ते मैम। जी
0: नमस्ते। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी अरविंद जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: होगी प्यार की जीत,
0: गाने की बोल।
1: तालों में नैनीताल। जी
0: तालों में नैनीताल।
1: जी
0: जी कहाँ, अरविंद जी कहाँ रहते हैं आप?
1: मैं श्रीनगर जिला महोबा उत्तर
0: जी
1: प्रदेश।
0: जी जी जी नैनीताल घूमने गए हैं।
1: अभी नहीं, इसी से काम चला रहा है, गीत गाने से। जी
0: जी, चलिए समय बहुत कम बचा है, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: आप ही कॉलर
0: धन्यवाद।
1: हूँ मैं।
0: जी,
1: आप सभी का दिन शुभ हो, सुनने वालों का भी, आपका भी।
0: धन्यवाद। और सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम का यह अंतिम गीत था। हमसे जुड़ने वाले और हमसे जुड़ने का प्रयास करने वाले सभी श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं। अब आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
1: मध्य प्रदेश है, पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: ये बारिश गुनगुनाती थी छत की मंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के शीशों पर लिख जाती थी उंगलियों से संदेशे। दोस्तों, बारिश के बहाने जब रूह को भिगोती फुहारें और सीली सीली सी हवा भीगी भीगी सी घूमती है, तो किसका मन इसमें भीगने का ना हो। दोस्तों, हमने मौसमों को जीना छोड़ दिया है। बिना आंगन के घरों में किसी भी मौसम के आने जाने का अब कोई असर नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में मौसम सिर्फ एक बटन बन के रह गया है। गर्मी लगी तो बटन ऑन करके पंखा या एसी चला दिया, ठंडी लगी तो हीटर। इस बार थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस बारिश के मौसम में भीगिए, थोड़ा खुश होइए, थोड़ा आनंदित होइए, महसूस कीजिए बारिश की इन बूंदों को, भीगी भीगी सी हवा को, सफेद भूरे काले बादलों को देखकर एहसास कीजिए। दोस्तों, ये जो बादल है ना, ये हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके अमृत बरसाने आते हैं। तो इस अमृतमयी मौसम में, इस बारिश के मौसम में, इस बरसात के दिनों में, ये दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आपके विचार जानना चाहेंगे, आपसे बातें करेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी।
1: जी जी, अम्बेडकर चौक टेबर वार्ड खोराई से राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी।
1: जी
0: कैसे हैं जी?
1: बढ़िया सर, बढ़िया। बरसात हो रही है।
0: बहुत बढ़िया। जिस चीज की हमें जरूरत थी, जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, आखिरकार वो बात हो ही गई।
1: जी जी।
0: तो बताइए, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: काम करते बिल्डिंग वर्क का। हाँ, तो काम भी अभी अच्छा चल रहा है।
0: अरे वाह वाह वाह। राम सखी जी, आज हमने जो विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे का, वो रखा है कि बरसात के दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
1: जी बोलिए बोलिए
0: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय हमने ये रखा है कि बरसात के दिनों में हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं वाहन चलाते वक्त, इसके अलावा हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, या हमारे खान पान से जुड़ी कोई भी ऐसी बात जो बारिश से संबंधित हो, उस विषय पर आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: जी, बरसात के दिनों में खान पान का तो ये है सर कि हरी सब्जियां भाजियां नहीं खाना चाहिए, उसमें इतने सूक्ष्म आपकी जीवाणु और बैक्टीरिया रहते हैं कि आपको नुकसान करते। तरबूज ताजा खाना खाएं, ताजा खाना खाएं। दूसरी बात, वाहन चलाते समय बरसात में बहुत सावधानी रखे, कहीं गड्ढा आ गया है, पानी भरा तो वहां से निकाले। अच्छा, जहाँ से निकल रहा हो वहां अगर आपकी नदी नाली पड़ रहे हो, अगर उफान पे है नदी, तो बिल्कुल वाहन ना निकाले। और अच्छा, वृक्षों पर अगर कर सके तो जल्दी से जल्दी करे, अच्छा वृक्षों पर करे, उसकी देखभाल करे।
0: जी, तो इन सब बातों पर आप भी अमल करते हैं?
1: बिल्कुल अमल करते हैं सर, हम तो साइकिल शॉप है, साइकिल चलाते हैं।
0: आप अमल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना, ना।

0: नमस्कार
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी।
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव बिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, आपकी मेहरबानी ऊपर वाले की
0: वाह वाह
1: द्वारा।
0: वाह। चलिए, आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि हमारी आज की बातचीत का विषय हमने रखा है कि बरसात के दिनों में आप कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं।
1: बरसात के दिनों में ज्यादा गीले भी नहीं रहना चाहिए, सूखे कपड़े पहनना चाहिए, थोड़ी
0: जी।
1: बरसात में नदी नालों का भी ध्यान रखना चाहिए।
0: नदी नालों से संबंधित कोई और सुझाव, कोई और विचार अगर आपके मन में हो तो वो भी बताएं।
1: नदी नाले तो सर अभी यहाँ हमारे यहाँ पानी की बहुत इंतजार कर रहे हैं सभी। हाँ, पानी तो यहाँ अभी छींटे आकर बरस जाते हैं और ज्यादा पानी नहीं गिर रहा है।
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी खुशियों की बारिश हो। फिलहाल एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी।
1: सर, मैं सतना से बोल रही हूँ, मोलिना रॉय।
0: रीना जी कहाँ से बोल रहे
1: मोलिना
0: हैं?
1: मोलिना
0: मोलिना।
1: जी
0: अच्छा जी, ये आपका नाम है?
1: जी मेरा नाम है ही।
0: अच्छा जी, बड़ा अनोखा नाम
1: मेरे
0: है।
1: माता पिता ने रखा।
0: जी, नहीं, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। आज की बात का विषय हम आपको बता दें कि
1: जी
0: आज हम बात कर रहे हैं कि बारिश के दिनों में हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं, या बारिश से संबंधित कोई सलाह, कोई सुझाव आप हमारे श्रोताओं को अगर देना चाहें तो बताइए।
1: बारिश के दिनों में तो ये कि सावधानी बरतनी है, तो आप पहली बात घर से जब भी निकले, भले ही मौसम खुला लग रहा हो आपको और कब बारिश होगी ये तो किसी को पता नहीं है, अचानक होती है, तो छाता अपने साथ अवश्य रखें। फोन के लिए एक पन्नी रखें जो आप उसको सेफ रख सकते हैं, जो आपके लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: और हो सके तो बारिश के दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखें, जो इम्यूनिटी को नुकसान ना पहुंचाए आपके।
0: लेकिन बारिश के दिनों में खाने की इच्छाएं तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ तला
1: हाँ,
0: भुना
1: चाय दाल
0: चटपटा।
1: पकौड़े
0: जी
1: तो है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के घर में बना के खाए, बाजार का खाए, लेकिन ध्यान दें कि वहाँ थोड़ा साफ सफाई रहे, आप खाए तो बीमार ना पड़े आप।
0: जी आप कहीं से भी खाएं, इस बात का ध्यान रखें, आप घर में हो या बाहर हो, साफ
1: जी
0: सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: जी, और उतना ही खाएं जितना आप हजम कर सकें। चलिए, आपने एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते बहुत अच्छे सुझाव दिए। हम एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: बात आपकी गीत हमारे सर जी।
0: जी हाँ, बात आपकी गीत हमारे में। आपका स्वागत
1: जी सर,
0: है।
1: नमस्कार
0: जी
1: जी।
0: आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं अनूपपुर जिले से बोल रहा हूँ सर, नीरज उपाध्याय।
0: अनूपपुर से नीरज उपाध्याय जी बोल रहे हैं।
1: जी सर, ठीक
0: कैसे हैं जी?
1: है सर।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: इन्हें सर खेती बाड़ी चल रही है, रोपाई के कार्य चल रही है
0: अच्छा। तो
1: जी।
0: इन दिनों आपके यहाँ बारिश वगैरह के क्या हाल हैं?
1: बारिश तो सर अनूपपुर जिले में अभी कल से थमी है, लेकिन बारिश काफी तेज हुई है अभी बीच में
0: अच्छा,
1: जी
0: मतलब
1: सर।
0: पानी को लेकर, बरसात को लेकर जो शिकायतें थीं वो अभी बनी हुई हैं या दूर हो चुकी हैं?
1: नहीं सर, हमारे अनूपपुर में तो दूर हो गई है सर,
0: अच्छा,
1: बारिश
0: चलिए,
1: काफी हुई
0: भरपूर
1: है अभी
0: बारिश
1: जहाँ
0: हुई
1: तक
0: है
1: मुझे।
0: मतलब
1: जी
0: वहाँ पर।
1: जी
0: आज हम बात कर रहे हैं कि इसी बारिश के दौरान या
1: जी
0: किसी भी बारिश के दौरान आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं, कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो आप
1: जी
0: चाहते हैं कि हमारे बाकी के सुनने वालों के भी वो काम आ सकते हों, तो बताइए।
1: जी सर, बिल्कुल बहुत सही विचार आपने आज का जो व्यक्त किया है, बहुत अच्छा है सर। बारिश के मौसम में तो सबसे पहले हमें, बारिश के मौसम में हमें जो जीव जंतु जहरीले निकलते हैं बरसात के मौसम में, उनसे हमें हमें दूरी बनाने रहना चाहिए हमेशा। मतलब आसपास साफ सफाई और टॉर्च का उपयोग रात में हमेशा करना चाहिए जी सर। और बरसात के दिनों में जल भराव जहाँ पे ज्यादा हो जाता है वो पास आस पास नहीं जाना चाहिए, नदी जैसे हो गए और बड़े बड़े गड्ढे हो गए जी सर। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं सर।
0: जी हाँ, ऐसे हादसों की खबरें आए दिनों हम सुनते देखते पढ़ते रहते हैं, और
1: जी
0: जो बारिश से जुड़ी हुई हैं। हम
1: जी
0: आजकल सेल्फी के चक्कर में या फिर अपनी रील बनाने के चक्कर में ज़्यादा जोखिम उठाने लगते हैं, तो ये ऐसे जोखिम बड़े बड़े हादसों को न्योता देते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: इनसे
1: सर
0: बचने का केवल एक ही उपाय है, सावधानी और सुरक्षा।
1: जी सर,
0: चलिए, नीरज उपाध्याय
1: सावधान
0: जी
1: जी
0: आपने
1: सर, सा
0: जी
1: जी बताया, ये बोल रहा था सर, सावधान के बताए हुए गाइडलाइंस को हमें पालन करना चाहिए
0: जी
1: जी, कि बरसात के मौसम में ऐसे जगहों पर ना जाएं जहां पे खतरा बना हो
0: हाँ, बारिश में तो ये
1: जी।
0: सावधानियाँ रखनी ही चाहिए और दीगर मौसम

0: रस्मों में भी हम किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से पहले उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि वो जगह अगर पर्यटन स्थल है तो जहाँ उसमें सूचना भी दी जाती है वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इस स्थिति में ये हादसा हो सकता है, वहाँ पर अगर गहराई है तो वहाँ बोर्ड लगे हुए रहते हैं कि यहाँ पर स्नान मना है या पानी में उतरना मना है, तो उन सारी बातों को भी हम ध्यान रखें।
1: जी सर, बिल्कुल
0: चलिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: आपने फ़ोन किया, इसके लिए धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी किनसे हमारी बात हो रही है?
1: नहीं, मेरा पहली बार कॉल लगा है। जी,
0: हाँ, पहली बार आपका फोन लगा है तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं।
1: मेरा नाम स्वाति है।
0: स्वाति जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: मेरे गांव का नाम मोहला महाराष्ट्र है, तहसील खामगांव, जिला बुलढाणा। गांव
0: बुलढाणा से बोल रही हैं।
1: का नाम मोहला महाराष्ट्र है।
0: अच्छा जी, क्या करती हैं?
1: जी, मैं तो आंखों से ब्लाइंड हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: ओहो, चलिए। तो रेडियो आप सुनते रहते होंगे?
1: जी, मैं तो बचपन से ही रेडियो सुनती हूँ।
0: तो स्वाति जी, बारिश के दिनों में ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हो सकती है जिन्हें आप बताना चाहती हैं?
1: बारिश के दिनों में खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी,
0: और
1: और
0: इसके
1: पहाड़ी
0: अलावा?
1: इलाकों में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए।
0: ये अच्छी बात आपने कही कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने का खतरा रहता है। बारिश के दिनों में अचानक
1: जी
0: पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो भरभरा के गिर भी सकते हैं। तो ऐसे किसी भी स्थान पर जहाँ पर ना जाने की ताकीद की गई हो, उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए।
1: जी
0: स्वाति जी, आपने फ़ोन किया, एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: जी शिवम जी नमस्कार।
0: और कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं और आपका परिचय जानकर हमारे बाकी के श्रोता भी बहुत खुश होंगे।
1: जी बिल्कुल, मैं ग्राम गौर जामा जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन जी, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: इन दिनों तो सर बस यही है, बारिश हो रही है अभी, तो बस खेतों के ही काम चल रहे हैं सर हमारे यहाँ तो। किसानों में
0: अच्छा।
1: जी खरीफ की फसलें लगी हुई हैं,
0: जी
1: हालांकि बीच में 10-12 दिन तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अभी कल से परसों से थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो अच्छा है अभी तो।
0: हाँ, तो ये बारिश फसलों के लिए लाभप्रद होगी।
1: जी बिल्कुल, ये फसलों के लिए अच्छी बारिश है, और कल तो कहा जाए तो दिन भर बारिश हुई है, लेकिन ऐसी बारिश हुई कि खेतों से पानी भी नहीं निकला, मतलब जो खेत को चाहिए था वही। जी
0: तो आज की हमारी बातचीत का विषय भी यही है कि हम बारिश के दौरान ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं या उन बातों पर हम अमल करते हैं जिन बातों को हमारे दूसरे श्रोता भी अगर जानें तो वो उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है।
1: देखिए, बारिश के, क्योंकि आपने विषय सिर्फ बारिश का रखा है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बातें हो सकती हैं, वो खान पान से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो खेती किसानी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो हमारे किसी सफर या किसी जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी सावधानियाँ हो सकती हैं। तो विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं,
0: जी
1: तो विषय काफी अच्छा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि विषय अच्छा है और मौसम भी उचित है। जी, तो मैं थोड़ी थोड़ी एक दो बातें बताना चाहूंगा,
0: बिल्कुल।
1: बाकी सभी श्रोता तो बता ही रहे होंगे और अच्छी बातें श्रोताओं ने कही भी होंगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जैसे बारिश के मौसम में कहते हैं कि अपना जो खान पान का जो रू मतलब अपने ये इच्छा होती है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, और वहीं डॉक्टर कहते हैं कि इस समय बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है हमारे लिए कि खान पान हम अच्छा रखें, और जो हमारी तला भुंजा खाने की एक इच्छा बहुत ज्यादा, कहते हैं कि बरसात में और सावन में ज्यादा विशिष्ट तौर पर कहा जाता है कि होती है, तो वो भी हम बनाए के रखें, लेकिन दूसरी तरफ ये संतुलन भी बना के रखें कि हम बीमार ना पड़े, इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया हमें ना पकड़ लें, कोई संक्रमण से हम बचे रहें, ये पहली चीज जरूरी है, क्योंकि पेट की समस्याएं भी इसी मौसम में ज्यादातर देखी जाती है कि पेट दर्द हो रहा है, या फिर दस्त वगैरह भी देखा जाता है बहुत सारे लोगों को कि बरसात आया तो ऐसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बरसात में ये समस्या हमें हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमारी गलती या कुछ ना कुछ कारण हो ही जाते होंगे, तभी ऐसा होता है, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। दूसरा, मच्छर इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, डेंगू के, मलेरिया के, आपकी चिकनगुनिया, तो ये बीमारियां भी मच्छर से ही फैलने वाली बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारी जो मैंने बताई हैं, तो इससे भी हमें परहेज करना है और बच के रखना है। अब एक चीज ये भी है कि इसके लिए मतलब पानी जमा ना होने दें, हालांकि ये बात है बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम रील जो चल रही है आजकल, रील वगैरह बना रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो बारिश में, बाढ़ों में,

0: इससे इसके लिए भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो छोटे छोटे जो ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं उसमें अपनी पूरी सतर्कता बरतें और कोशिश ये करें कि जो जगह भयानक है या फिर जहाँ पे खतरा है वहां पर जाए ही ना, बल्कि क्या होता है कि ये सेल्फी वहीं खींच के ले जाती है, तो उससे हमें बचने की आवश्यकता है।
1: चलिए, आपने बहुत सारे विषयों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता इन विषयों को भी सोचें, विचारें और अपने जीवन में उतारें, ताकि बारिश के दौरान
0: चलते चलते एक बधाई मैं आपको देना चाहूँगा कि परसों के दिन 7:30 से 8:30 बजे से और 9:15 तक जो आपके साथ सफर गुजरा था, काफी अच्छा लगा था मुझे।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम को सराहा। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
0: शुक्रिया। नमस्कार।

0: जी नमस्ते। हाँ
1: हेलो
0: जी नमस्ते,
1: जी, नमस्ते।
0: किनसे हमारी
1: प्रेम
0: बात हो
1: सिंह
0: रही
1: सिसोदिया
0: है?
1: बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। प्रेम
0: एक बार नाम अपना फिर से बताइए। अच्छा
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: जी, प्रेम सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, तो कुछ सुना सकते हैं अभी हमें तत्काल?
1: जी बिल्कुल, शिव जी की एक छोटी सी भजन की लाइन सुना दो आपको।
0: स्वागत है।
1: जी, हे

0: शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
1: आपने बहुत अच्छा भजन हमें सुनाया। अब हम मुद्दे की ओर मुड़ते हैं। हमारी आज की बात का विषय है कि बारिश के दिनों में कौन कौन सी सावधानियां आप रखते हैं और हमारे श्रोताओं को वो सुझाव देना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। बारिश का दौर शुरू हो चुका है और जगह जगह पर पानी भर जाता है। कहीं हम गाड़ियां लेकर भी जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सड़क पर कितना गहरा गड्ढा है या ऐसे सीधे मतलब गड्ढे में गिर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे जगह पे जाए जहाँ पर पानी भरा हुआ ना हो और घर से निकलने के लिए छाता ले जाए, रेनकोट पहने और ऐसे मतलब बताते हैं ना कि बारिश का दौर शुरू हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि घर पे ही रहे। जी
1: चलिए।
0: और जैसे कि आपको जाना भी है, जैसे हम खेत में काम करने भी ले जाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु भी निकल आते हैं, तो उनको भी मतलब ध्यान से देखिए और देखते हुए अपना काम करते रहिए।
1: चलिए, बहुत अच्छे विषय की ओर आपने ध्यान हमारा दिलाया है। हम चाहते हैं एक गीत हम आपको सुनवाएं। नमस्कार
0: जी जी नमस्ते जी।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी, नमस्ते श्रीमान जी। संजीव, मेरा मेरा मैं पहले अपना परिचय दे दूं।
0: जी हाँ जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में और आपसे जानते हैं आपका परिचय।
1: जी श्रीमान जी, ग्राम बापू छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। श्रीमान जी, और मेरा नाम है श्रीनाम सिंह रजक।
0: अच्छा जी, श्री राम जी।
1: श्रीनाम, SIRNAM, श्रीनाम सिंह रजक
0: अरे वाह वाह वाह, श्री राम
1: जी।
0: सिंह रजक जी,
1: जी
0: छतीपुर से बोल रहे हैं आप।
1: छितीपुर से, श्रीमान छितीपुर, शिवपुरी जिले में आता, छितीपुर कर रहा तहसील में।
0: अच्छा,
1: जी श्रीमान जी, संजीव
0: जी।
1: दो लाइन बोलना चाहता हूँ। वृक्ष धरा के हैं आभूषण, वृक्ष धरा के हैं आभूषण, इनसे होता दूर प्रदूषण। वृक्ष लगाओ पुण्य कमाओ, वृक्ष काटना महापाप, भैया बच के रहना आप।
0: वाह वाह वाह, तो इस बारिश के दौरान आपने भी वृक्षारोपण किया है?
1: बिल्कुल श्रीमान जी। सर जी, मैं पंचायत भवन में नौकरी करता हूँ। सर जी, मैं वृक्षारोपण करवा रहा हूँ, पंचायत में करवाता हूँ हर
0: अच्छा,
1: साल।
0: तो केवल पेड़ों को लगाना ही पर्याप्त है या उनकी देखभाल
1: नहीं
0: करके
1: श्रीमान
0: उन्हें
1: जी,
0: एक
1: हम
0: वृक्ष बनाना भी जरूरी
1: जाली
0: है?
1: लगवाते हैं, बाकायदा जाली लगवाते हैं, जो गुम्मा वाली घरुआ बनवाते हैं, उन्हें पौधा लगवाते हैं। सर जी, हमारी पंचायत कम से ज्यादा नहीं, सर जी 400-500 पेड़ हो गए सर जी, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह, चलिए आप
1: जी
0: बहुत
1: श्रीमान
0: अच्छा
1: जी,
0: काम कर रहे हैं। और ये बारिश जो है, ये पानी नहीं बरसाती, ये
1: जी श्रीमान
0: बारिश
1: जी,
0: अमृत
1: सर जी
0: बरसाती
1: अपने
0: है।
1: की खुद गलती है। अगर आप अपन पेड़ नहीं लगाए तो एक दिन अपनी आने वाली पीढ़ी मतलब बहुत पीछे चली जाएगी श्रीमान जी।
0: जी, तो इस धरती को हमको, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को वैसे ही सौंपना है जैसे हमें मिली
1: बिल्कुल,
0: थी।
1: जैसे हमने देखा सर जी, और मतलब
0: बिल्कुल,
1: और अच्छा, इससे अच्छा कर सके तो और अच्छी बात है
0: और
1: श्रीमान जी।
0: बेहतर बना के अगर हम इसे जा सकें तो
1: जी
0: ये सबसे बड़ा हमारा पुण्य का काम है।
1: जी श्रीमान जी, जी।
0: आपने अच्छी बातें की, हम आपको एक गीत सुनवाते हैं।
1: जी
0: नमस्कार।
1: श्रीमान जी, धन्यवाद सर, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद राज्य वन्य प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की है। भोपाल के बोट क्लब में आज से 16 अगस्त तक राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसमें 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे और प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम, मन पसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आकांक्षा कि आप इतने भागदौड़ वाली जिंदगी में समय निकालकर हमें पत्र लिखते हैं अपने पसंद के गीतों सुनने के लिए। तो लीजिए आज फिर शुरुआत करते हैं आपके पसंद के गीत।

गीतों से, जिसे सुनने के लिए आपने फरमाइश भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने और शेरपुर कलां गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। और जो गीत आप सभी सुनना चाहते हैं उसके लिए एक और फरमाइश हमें आई है, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म स्वीकार किया मैंने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। लीजिए सुनिए।

राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाजापुर, मध्य प्रदेश से MM राजावत, राज मधु राशि, रक्षित चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, स्वीटी सागर, रिचा रिया रीत और ऋषभ राजावत, गोला बाजार बक्सर से जीवत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष कुमार, आयुषी और सानवी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म नूरी का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत जानिसार अख्तर का है और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

राही बदल गए। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दादा इस फिल्म का गीत सुनिए यसुदास की आवाज में। बोल कुलवंत जानी के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से दत्त के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म दादा का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म इजाजत का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत गुलजार का है, संगीत है आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
6: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
7: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
8: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
7: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
8: अरे काहे का मजा।
7: क्यों, क्या हुआ?
8: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
7: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
8: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
7: ये हुई ना बात।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
10: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की पहली कड़ी।

अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी, भारत की तरुणाई की वो ऐसी अंगड़ाई जिसने स्वतंत्रता के पहले संग्राम का इतिहास कोटि सूर्यों की प्रभा से आलोकित किया, जो शीर्षक थी शौर्य की, संकल्प की, उत्सर्ग की, जिसकी स्मृति अब भी उद्वेलित करती है शिरा शिरा में ऊर्ज्वसित ओज की नित्य तरंगणी, सतत प्रवाहित आत्मविश्वास की उन्मुक्त धारा, एक धरोहर, एक विरासत।

0: भारतीय इतिहास की 19वीं शताब्दी और इस सदी का सन 1857।
1: जब समय की राहों पर दूर दूर तक शौर्य बलिदान और आत्मोत्सर्ग के उजाले फैलते गए, संक्रमण की धुरी पर नियति के चक्र घूमने लगे, पीढ़ियां उठ खड़ी हुई और दमकते हुए कालक्षण अमर और स्मरणीय आख्यान का व्याख्यान बन गए।

0: पहले स्वाधीनता संग्राम में यश और कीर्ति की संवाहक दो साहसिक घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। नींव के पत्थरों की तरह जो बिछा हुआ है और उस पर टिका हुआ है भव्य भारत का ये आधुनिक प्रासाद अपने कलशों कंगूरों के साथ। वो महासंग्राम जैसी एक चिंगारी थी जो देखते ही देखते जन दावानल में बदल गई। ओर से छोर तक समूचे दृश्य पटल को जिसने समेट लिया।
1: आग की आकाश चुमती लपटों का एक ठिकाना थी झांसी। लेकिन झांसी ही क्यों, मेरठ, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, कहां कहां नहीं थी क्रांति की ये अंगड़ाई। पूरा का पूरा देश और उसका जीवित जागृत जनगण, किसान, दस्तकार, सामंत, सूबेदार और सिपाही मुक्ति के इस पावन संकल्प के साझीदार हिस्सेदार थे। लोहू और लोहे से एक प्रस्तावना लिखने में जुट गए थे।
0: ये अचानक नहीं हुआ। इतिहास में अकारण या संदर्भों से कटकर अकस्मात कुछ भी घटित नहीं हुआ करता। इतिहास में कार्यों के साथ कारणों की एक नियोजित श्रृंखला होती है। हर एक घटना का पूर्वापर संबंध, वो कारण बीज जो वर्तमान के धरातल पर पीछे से पहुंचकर अंकुरित और पल्लवित होता है और एक कालखंड बन जाता है। कभी जो ललकारता है तो कभी वो पराभूत भी कर देता है। अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जनगण कभी इसे नियति मानकर समर्पण भी कर देते हैं।
2: लेकिन जीवन और जागृत संकल्प कभी समर्पण की इस असहायता को स्वीकार नहीं कर पाते। जनगणों का हौसला कभी पस्त नहीं होता। उन्हें संक्रांति के समय की नैसर्गिक पहचान होती है। अवसर आते ही वह आलस्य और निरीता को त्याग कर परिवर्तन के अनुष्ठान में उठ खड़े होते हैं।
1: 1857 की लोक क्रांति एक ऐसा ही धन्य समय था, जनता के जागरण का समय, जनगण का चुनौतियों का मुकाबला करने वाली तत्परता और प्रस्तुति का अभूतपूर्व अध्याय।
0: अज्ञात शताब्दियों से महादेश भारत सुदूर देशों के प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। सभ्यता और संस्कृतियों का एक चौराहा जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए। प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया।
2: यदि कोई आतताई बनकर लूटपाट के इरादे से आया तो भारत की जनशक्ति ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और बदस्तूर लौटाया। विश्व विजय का दंभ भरने वाले योद्धाओं का घमंड चकनाचूर कर दिया।
1: लेकिन आने वालों में ऐसे भी थे जो वैभव, सुख, शांति की खोज में भारत भूमि तक आए थे। उन्हें यहाँ ममत्व और निजता के अक्षय धाम मिले। अवसरों ने उन पर कोई कोताही नहीं बरती, भरपूर दिया, इतना कि उन्हें संकल्पों, सपनों के लिए संभावनाओं का आकाश और अपनों का विश्वास मिला। वो यही के होकर रह गए, इस सहिष्णु सदाशय माटी में घुल मिल गए।

0: भारत ने कभी भी सब्र के साथ आने वाले तूफानों के आगे सिर नहीं झुकाया, हमेशा उसका मुकाबला किया, कभी कामयाबी के साथ और कभी नाकाम होकर। और जब वो नाकाम भी रहा तो उसने अपनी नाकामयाबी को याद रखा है और अगली कोशिश के लिए अपने आप को तैयार किया है।
1: विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 1857 में भारतीय जनगण की अंगड़ाई एक ऐसी कोशिश थी जिसने स्वाधीनता के गौरवशाली महासंग्राम की भूमिका तैयार की और अंततः अगली सदी में सफलता प्राप्त की।
2: भारत के इतिहास के ये संघर्षों से समुज्ज्वलित पृष्ठ रोचक हैं, जो भारत की जनता की अदम्य जिजीविषा की गवाही देते हैं। एक उपक्रम इन पृष्ठों में समाया हुआ है, भारत की स्वाधीनता का लोलुप विदेशियों द्वारा अपहरण, जनगण का संकल्पित संघर्ष और उसके मजबूत इरादों के द्वारा फिर से स्वाधीनता का वर्ण, एक आभ्यंतर नाटक और उसका पटाक्षेप।
0: हिंदुस्तान की कहानी में इसी जिजीविषा को शब्द देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये कोई गुप्त सिद्धांत या गूढ़ विद्या नहीं है जिसने हिंदुस्तान को इतने लंबे युगों तक जिंदा और कायम रखा। जिस चीज ने ऐसा किया है वो है उसकी कोमल मानवता, उसकी बहुरंगी और रवादारी बरतने वाली संस्कृति और जिंदगी, और उसके भेद भरे तरीकों की गहरी सूझबूझ, उसकी भरी पूरी जीवनी शक्ति की धार।
1: जीवनी शक्ति के संकेत के रूप में भारत विदेशियों के लिए एक आकर्षण की भूमि था, किस्से कहानियों कल्पनाओं का एक रूमानी देश जिसके दस्तकारों कारीगरों का हुनर धरती के पड़ावों को लांघकर देश देशों के बाजारों तक पहुंचता था और सुदूर निवासियों को चमत्कृत करता था। उनकी इच्छाएं उद्वेलित हो जाती थीं। विस्मय से वह सोचते थे कैसा होगा वह देश।
2: सदियों सदियों तक भारत भूमि का यश और हमारे दस्तकार कारीगरों का कौशल दुनिया के बाजारों में गूंज रहा था, ऐसी कथा कल्पनाएं बनकर जो सोने की चिड़िया का सम्मोहन थी। धन धान्य भरपूर भंडार, स्वर्ण का वैभव का परम धाम, स्वर्ग कहीं था तो बस यहीं था, यहीं था। दौड़ पड़े परदेसी लोलुपता से ललचाए इस महादेश की माटी को पंकिल करने।
0: जब एशिया मूर्छित और अपनी पुरानी कोशिशों की वजह से थक गया था, आत्म सम्मोहन की शलथता उसे घेर चुकी थी, तब पिछड़े हुए यूरोप में तब्दीलियों के आसार दिखाई दिए।
1: उस जमाने में भारत में ये परिवर्तन नहीं हुए। भारत और यूं कहें एशिया भर की रचनात्मक स्फूर्ति और आविष्कार खोजों की शक्ति जैसे अपंग हो गई थी, एक ठहराव आ गया था।
2: यूरोप में गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस के इस दौर में कपड़ा बुनने की उड़ती हुई तकली, घड़ी को चलाने वाले पेंडुलम, छापे खाने और भाप के इंजन बन रहे थे जो औद्योगिकरण का आधार बने। हाथों की जगह मशीनें आईं, उत्पादन बहुत बढ़ गया। बढ़े हुए उत्पादन के लिए ज्यादा कच्चे माल की जरूरत थी और जरूरत से ज्यादा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की।
1: ये यूरोप का दृश्यपटल था। विपरीत इसके भारत के लोग हवाई बातों की बुरी लत में पड़े हुए थे। अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, कामकाज के पुराने तौर तरीके, महाजन और सामंती शोषण से करहाती जनता, दुर्भाग्य का ग्रहण महादेश के सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह नए और पुराने के टकराव का नेपथ्य था।
0: औद्योगिक क्रांति की स्फूर्ति और जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के नाविक समुद्री रास्तों से यहां वहां दौड़ पड़े। उनकी तलाश थी वो सोने की चिड़िया जिसे उन्होंने अफसानों में देखा था।
2: वास्को डी गामा भारत पहुंचा। और उसने पश्चिमी तट पर गोवा में पुर्तगालियों की बस्ती बनाई। इस सिलसिले में आने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। उनकी अपनी दावेदारियां थीं, अपने अपने इरादे और व्यापारिक स्वार्थ थे। अलग अलग कंपनियां, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इंग्लैंड ने भारत में व्यापार करने की सनद दी थी। व्यापार और तलवार का ये खेल साम्राज्यवाद का आधार बना। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहास को इसने लिखा।

0: ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो को जहांगीर के दरबार से व्यापारिक कोठियां बंगाल और दक्षिण भारत में स्थापित करने की इजाजती सनद मिली थी और 100-125 साल बाद प्लासी की लड़ाई के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को पुख्ता कर दिया।
1: इस छोटे से कालखंड में अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को परास्त ही नहीं किया, अब वह भारत को हड़पने के इकलौते दावेदार थे। भारत के समुद्री किनारों से उठा विनाश का ये बवंडर पसरता चला गया। फिरंगियों को अपने पांव जमाने के लिए कई जगहें और दुर्लभ संधियों षड्यंत्रों के कई बहाने मिलते गए। वो काली आंधी की तरह फैलते गए।

0: अब अंग्रेज एक आवश्यक उपस्थिति बन चुके थे, हर कहीं हर जगह। क्रूर षड्यंत्रकारी सब कुछ निगलने हड़पने के लिए जीभ लपलपाते हुए आश्रय देने वाले देश को नेस्तनाबूद करने पर आमादा, जिनकी नीति और कारगुजारी थी आपस में लड़वाना और जनता को कमजोर करके बंदर बांट करना, सत्ता को हड़पना और प्रभुत्व तथा सर्वोपरिता हासिल करना।
1: और हिंदुस्तान के हालात इसी लायक थे। महान मुगलों की ताकत औरंगजेब के बाद से क्षीण हो चली थी। आपसी मारकाट, छीना झपटी और उत्तराधिकार के लिए शहजादों की कलह से दिल्ली का विगत वैभव अस्ताचल की ओर अग्रसर था। दिल्ली की बादशाहत, दिल्ली के शासक की शक्ति और धाक, रुतबा और मर्तबा जैसे गुजरी हुई कहानी बन चुके थे। देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बिखर गया था जो निरंकुश और स्वच्छंद थे।
2: बादशाहत एक खोखला प्रतीक थी, एक ऐसा भ्रम जिसकी परछाई तक उसके आसपास नहीं थी।
0: और दूसरे शासक थे, पूरब में बंगाल का नवाब, दक्षिण में हैदर अली और पेशवाई के सरदार सूबेदार, जो यहां वहां खुद मुख्तार रियासतें बना चुके थे। उत्तर पश्चिम में सिख, अवध में फिर नवाब। इस कमजोर ढांचे का ताना बाना बिखरा हुआ था। लक्ष्य की एकाग्रता उनके पास नहीं थी।
1: कंपनी व्यापारियों की जमात थी, उसने भारी मुनाफा कमाया और इस मुनाफे की कीमत जनता को चुकानी पड़ी। डलहौजी ने विदा होते समय कहा था, कंपनी को 40 लाख पौंड का लाभ मिला है और इंग्लैंड जाने वाले जहाजों का वजन दुगना हो गया है, लेकिन बस व्यापार ही नहीं, वो तो लंबे फायदे का सौदा कर रहे हैं। इसी देश की दौलत से उन्होंने फौजें खड़ी कर दी, मुट्ठी भरो काम और हजारों देशी सिपाही जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, जी जान लगाकर, सिर पर कफन और परंपराओं का केसरिया बाना पहनकर, ये भूल कर कि वो किसके लिए

0: कंपनी की साजिशों, संधियों और युद्धों के सिलसिले में एक के बाद एक राज्य प्रदेश डूबता चला गया।
1: पलासी की लड़ाई इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, जिसे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सोपान माना गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सहयोगी फ्रांसीसियों को हराकर कंपनी ने पहले बंगाल पर अपना कब्जा किया और यहां से आगे बढ़कर उड़ीसा को हत्या लिया।
2: 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में मैसूर की पराजय और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर राज्य अधीनस्थ हुआ।
1: सिंध पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेज सेनाएं गुजरी थीं, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और सिंध के सामंतों को धमकी दी कि वह अधीनता स्वीकार करें। इसके बाद सिंध को राज में मिला लिया गया।
2: पंजाब में सिखों के खिलाफ अभियान छेड़कर स्थानीय देशद्रोहियों की मदद से ब्रिटिश सेनाओं ने आजादी छीन ली। सिख मूल रूप से किसान थे और मजहबी दीवारों के खिलाफ प्रेम और भाईचारे का आंदोलन चला रहे थे। सिखों की पराजय से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ उपनिवेशवाद पसर गया।

0: भारतीय राज्यों को उपनिवेश बनाने का कंपनी का एक तरीका था। पहले वो राजाओं नवाबों से सहयोग और सहायता के समझौते करके उनके इलाकों में कंपनी की फौजें भेज देते थे, जिनका खर्च हिंदुस्तानी सामंत को उठाना पड़ता था। वो कंपनी के कर्ज में डूबता चला जाता था और आखिर में इस बहाने से अंग्रेज उसकी अलमदारी को राज में मिला लेते थे।
1: अवध में यही हुआ। पहले संधि के बाद कंपनी की फौज आई। इस फौज का खर्च उठाने के लिए नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से रियाया पर नए कर लगाए। जनता में इससे असंतोष फैला, विरोध हुआ। अंग्रेजों को बहाना मिला कि नवाब शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है, बल्कि विद्रोहियों की सहायता और समर्थन कर रहा है।
2: नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया गया। अवध के लिए लॉर्ड कैनिंग ने फरमान जारी किया। अवध प्रांत की भूमि की मिल्कियत के अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस अधिकार का उपयोग वो जिस प्रकार चाहेगी उस प्रकार करेगी।
0: इस तरह भारत का स्वातंत्र सूर्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था और पराधीनता की कालिक धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। लेकिन स्वाभिमानी देश की तरुणाई इससे बेखबर नहीं थी। पराधीनता का दंश स्फीत रुधिर में तीखा होकर कसक रहा था। एक चिंगारी थी जो बेचैन होकर आकार ले रही थी। कंपनी की फौज के सिपाहियों में, देश के किसानों में, स्थिति की असहायता से उबे हुए सामंतों में, अधिकार खो चुके रजवाड़ों में क्रांति की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी।
1: अंग्रेजी विस्तार की एक विंध्याचली बाधा थे मराठे। मुगल साम्राज्य के पराभव काल में ये जाबाज मराठे समूचे उत्तर भारत तक फैल गए थे। मराठों की शक्ति का सामना अंग्रेजों से हुआ। मराठा सूबेदारों की रियासतें यहां वहां थीं। ग्वालियर, झांसी, इंदौर और बड़ौदा, इन

0: 8 लाख रुपयों की पेंशन मंजूर की गई।
1: पेशवाई इतिहास से विदा हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने दरबार, लाओ लश्कर, मुसाहिबों, स्त्रियों समेत पूना से बिठूर के लिए रवाना कर दिए गए।
2: पेशवा के साथ आए परिवारों में से एक मोरोपंत तांबे का परिवार था। इस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 19 नवंबर सन 1836 और इस कन्या का नाम था मनु।
3: मुलगी झाली, मुलगी,
4: अरे वाह, मुलगी झाली का, लड़की हुई है, लड़की हुई है ना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपीआई लेन देन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीसी के माध्यम से वे शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित भी करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से महाविद्यालयों में संस्कृत विषय शुरू करने के लिए विदिशा जिले से एक और शाजापुर जिले से दो महाविद्यालय का चयन किया है। भोपाल के बोट क्लब में आज से 16 अगस्त तक राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रोलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इनमें 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आप सभी को प्रीति जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। यदि उन्हें सही शिक्षा, कौशल, अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे नवाचार, विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता, खेल, कला और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कल हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले हैं और इसका

उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है आज के युवा ही कल के राष्ट्र निर्माता हैं। ये तो बात हुई युवाओं की, अब बात करें धरती के अमृत की। जी हाँ, जल। जल है तो कल है सखियों। जल हमारे भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और भूजल के लगातार घटते स्तर ने जल संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। ऐसे में सरकार के साथ साथ हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है कि वे जल संरक्षण की जिम्मेदारी को समझें और अपने स्तर पर योगदान दें। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों और कुओं का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता, जल का विवेकपूर्ण उपयोग और वृक्षारोपण जैसे छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए संकल्प लें कि पानी की हर बूंद बचाएंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे और जन भागीदारी से जल संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। सखियों, ये योजना केवल एक आवास निर्माण योजना नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। यह योजना हर परिवार के पास अपना घर के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्रता की बात करें तो सखियों, आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय संबंधी जानकारी, बैंक खाता और निवास संबंधी दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदक के नाम पर सामान्यतः देश में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इस योजना के बहुत से लाभ हैं सखियों: महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं में विस्तार करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो सखियों, यदि आप भी अपना घर बनाने का सपना देख रही हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूर उठाएं। और अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की,
0: मेरी उड़ान। श्रृंखला मेरी उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है सखियों आपका। आज हमारे साथ हैं रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में सफलता अर्जित की हुई सफलतम अभिनेत्री श्रीमती कनुप्रिया शंकर पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है कनुप्रिया जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
0: कनुप्रिया जी, हमारी जो सखियां कार्यक्रम सुन रही हैं वो यकीनन आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो देखती हैं और बहुत बड़ी फैन भी रही होंगी। हमारी सखियां जानना चाहेंगी कि आप अभिनय क्षेत्र में किस तरह से दाखिल हुई और कैसे आपका रुझान इस ओर बढ़ा।
2: तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं उन सौभाग्यशाली लड़कियों में से हूँ जिसके माता पिता ने बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ संगीत, नृत्य और अन्य ललित कला जैसे थिएटर, ड्रामा, रेडियो नाटक, मंच पर नाटक और हर भाषा में, मैथिली में भी मैंने बहुत नाटक किए हैं, हिंदी में नाटक किए हैं, अंग्रेजी में नाटक किए हैं। तो मेरा इस तरह का एक्सपोजर हुआ कि स्कूल के साथ साथ हम बाहर भी मंच पर, पटना में जहाँ की मैं हूँ बिहार की, वहां पर नाटक करती रही। तो मेरा पहला नाटक ही था 6 साल की उम्र में। वैसे तो थिएटर है, म्यूजिक है, आर्ट है, ये एक व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत काम देता है, लेकिन मेरे लिए ये एक प्रोफेशन का हिस्सा भी है क्योंकि मैंने इसे अपना प्रोफेशन बनाया। मैंने तो ट्रेनिंग भी हासिल की थिएटर की और साथ में प्रोफेशनल नाटक भी किए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कनुप्रिया जी। अगर हमारी कोई सखी अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है तो आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी?
2: देखिए, अभिनय कुछ ऐसा है कि आप किसी भी उम्र में, लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी भी उम्र में आ जाएंगे, और मैं ऐसे कई महिलाओं से मिलती हूँ जिनके बच्चों की शादी हो गई है, विदेश चले गए हैं, लेकिन वो अब कुछ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, फिर वो टेलीविजन करने लगती हैं, कुछ फिल्में भी करने लगती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं। अभिनय का ये मतलब तो है नहीं कि आप सिर्फ टेलीविजन और फिल्म करें, अभिनय का ये मतलब है कि आप मंच पे भी काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्त्री वाकई एक अभिनेत्री बनना चाहती है या रंगमंच में करना चाहती है तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले, तभी वो अपने आप को जब सीरियसली लेगी तो आगे जो व्यक्ति बैठे हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, आपको जो कास्ट करने वाले हैं, वो भी आपको सीरियसली लेंगे, नहीं तो आपको भी बिल्कुल कैजुअली लिया जाएगा। वैसे अभिनय करने के लिए अगर ट्रेनिंग ले लेंगे तो लोगों के सामने आप एक क्रेडिबल, एक सच्चे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक प्रोफेशनल नजर आएंगे और आपको डेफिनेटली बेहतर काम मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए ग्लैमर के विषय में, क्योंकि इस काम में ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, यही है, मेहनत ही ज्यादा है।
0: तो आपने किस तरह का कोर्स करा था इस क्षेत्र में आने के लिए?
2: तो चूंकि बचपन से थिएटर करती रही मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ी रही, जहां एक डिप्लोमा कोर्स था, उसके बाद एमए के साथ साथ मैंने किया था वो, उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई जो कि मतलब मूर्धन्य इंस्टीट्यूट है, भारत ही नहीं एशिया का एक बिरला इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहां जरूर गई, 3 साल का कोर्स था पोस्ट ग्रेजुएशन, चूंकि मेरा एक ऑलरेडी थिएटर का बैकग्राउंड था तो वो प्लस थोड़ा समय करना, प्लस चूंकि मेरे पति भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं तो उनसे भी बहुत चर्चा होती थी, नेचुरल कोर्स था कि मुझे क्या काम करना है, तो मैं शायद जो काम आता है वही कर रही हूँ।
0: अभी तक आपने कितने सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है?
2: सीरियल्स मैंने 8-10 अच्छे सीरियल्स में काम किए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कसौटी जिंदगी की, ऐसे सीरियल्स। फिल्में भी कुछ की हैं मैंने, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जरा हटके जरा बचके, मिलन टॉकीज वगैरह, तो दर्शक देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं, मैं वहाँ करना चाहती हूँ।
0: अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्थिक उपार्जन की बात करें तो आप संतुष्ट हैं अपने काम से?
2: हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जैसे एक प्रोफेसर और एक लॉयर और एक डॉक्टर कमाता है, वैसे ही एक एक्टर अगर लगा रहे शिद्दत से तो वो भी कमाता है और बहुत निरंतर कमाता है।
1: कनुप्रिया जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है, तो कुछ गीत हमारी सखियों को आप गाकर सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
2: गीत तो अगर मैं गाऊं, चूंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं, तो बेहतर है कि मैं कुछ अपने नाटक का ही कुछ दो लाइन गुनगुनाती हूं। तो ये कुछ ऐसा है कि कविताएं लिखी हुई हैं लेकिन उसको कंपोज किया गया है गीत में, तो हालांकि है ये ऐसा लगेगा कि शब्द तो, अरे ये तो ऐसा लग रहा है बातचीत है, लेकिन उसको कंपोज कर दिया गया, तो मुझे ये बहुत पसंद है। फिर उसके

0: मुझको गले लगाएगा, पूछेगा कहाँ रही तुम मेरी बहना, कब से तेरी बाट निहारूं। वो देखो तेरी भावज है, वो है शादी में पाया जो खेतों का चक, और साथ में 11 घोड़े 32 गायें। कुछ इस तरह का है कि है शब्द लेकिन गीत में।
1: कनुप्रिया जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति।

सखियों, सावन का महीना चल रहा है, कई सारे त्योहारों का आनंद भी हम ले रहे हैं, तो सुंदर दिखना भी लाजमी है। सखियों, ऐसे में हमारे खान पान में ऐसी कई चीजें शामिल हैं जिसमें खूबसूरती और स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। दही भी एक ऐसा ही खजाना है जिसका उपयोग हर तरह से फायदेमंद है। तो आज रूप लावण्य में बात करेंगे दही से अपना सौंदर्य हम किस तरह से निखार सकते हैं। सखियों, दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड और मलाई यानी चिकना होती है, ये दोनों ही त्वचा को निखार कर मुलायम बनाने का कार्य करती है और त्वचा को गोरा बनाती है। दही में बेसन मिलाकर उपटन की तरह लगाने से त्वचा के रोम छिद्र अच्छी तरह से साफ होते हैं। चौकर के साथ दही मिलाकर लगाने से ब्लैक हेड्स कम होते हैं। दही में शक्कर मिलाकर बालों पर लगाने से यह कंडीशनर का काम करता है। मुल्तानी मिट्टी के साथ दही अच्छे से क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। दही त्वचा के लिए एक वरदान है। चेहरे पर दही लगाकर 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरे की झाइयां कम होती है और चेहरे पर चमक और रंग भी साफ होता है। दही में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सिर धोने से रूसी दूर होती है सखियों, और बाल साफ मुलायम और काले होते हैं। ऐसे ही गर्दन के पिछले भाग पर कई बार कालीमा सी छा जाती है। इसे हटाने के लिए प्रतिदिन नहाते समय खट्टे दही से मालिश करें, कालापन दूर हो जाएगा। चेहरे के मुहासे दाने को दूर करने के लिए खट्टे दही का लेप चेहरे पर करें, सूखने पर धो लें, चेहरा चमक उठेगा और मुहासे दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दही का उपयोग करें और अपना रूप निखार लें।

सखियों, रिमझिम बारिश हो तो कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने का मन तो करता ही है। आज फूड जोन में हम आपको बता रहे हैं सूजी स्टीम बॉल बनाने की आसान सी रेसिपी। तो सामग्री नोट करें सखियों, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, तेल आधा छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, अजवाइन, राई, मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग चुटकी भर, तिल 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, कड़ी पत्ते 5 से 6 और हरी मिर्च 1 कटी हुई। और विधि बहुत ही आसान है सखियों। एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें नमक और तेल मिलाएं। एक उबाल आने पर चम्मच से चलाते हुए सूजी मिलाएं। लगातार चम्मच से चलाते रहें। जब सूजी गुथे हुए आटे जैसी हो जाए तो आंच को उतार कर ठंडा होने दें। अब हाथों में चिकनाई लगाकर मिश्रण को मलें और छोटी छोटी बॉल बनाएं। गहरे बर्तन में रखकर इन बॉल्स को भाप में 10 से 12 मिनट मध्यम आंच पर पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करके राई और तिल तड़काएं, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डालें, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालकर इसमें स्टीम बॉल्स को डालकर अच्छे से मिलाकर ऊपर से हींग व नींबू रस डालें। अब बॉल्स को कुरकुरा करें, 1-2 मिनट ढककर रखें। अब गर्मा गर्म बॉल्स पर हरा धनिया डालकर परोसें और सावन के महीने का आनंद लें। सखियों, काम की कुछ बातों में आज बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। सखियों, आजकल समय अभाव के कारण हर काम के लिए हम कोई ना कोई उपकरण का उपयोग करते ही हैं। चाहे खाना बनाना हो या फिर कपड़े ही क्यों ना धोना हो, आजकल तरह तरह के डिजिटल उपकरण मौजूद हैं हमारी सहायता के लिए, पर इनके उपयोग में जरा सी लापरवाही हमें बड़ा नुकसान भी पहुंचा देती है। यदि कपड़े धोने की ही बात करें तो वॉशिंग मशीन का उपयोग करते समय हमें कुछ न कुछ सावधानियां तो रखना ही चाहिए। मशीन में कपड़े डालते समय पहले बड़े कपड़े और फिर छोटे कपड़े डालें। हमेशा तह खोलकर डालें, नहीं तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे। बहुत ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग भी न करें। कपड़ों के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट डालें। कोई भी नया कपड़ा जिसका रंग निकलता है उसे ना डालें, नहीं तो सारे कपड़ों पर रंग लग जाएगा। जिप या चेन वाले कपड़ों की जिप बंद करके ही दूसरे कपड़ों के साथ डालें, अन्यथा इनकी जिप से दूसरे कपड़े फट भी सकते हैं। अक्सर बटन और हुक्स को खोले बिना ही कपड़े मशीन में डाल देते हैं, इससे कपड़े खींचते हैं और बटन टूट भी जाते हैं, इसलिए बटन खोलकर ही मशीन में कपड़े डालें। हमेशा ध्यान रखें सखियों कि चलती वॉशिंग मशीन में कपड़े ना डालें, ना निकालें, ना स्विच को गीले हाथों से छुएं, आपको करंट लग सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अब सुने ये प्यारा सा गीत।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ क्यों नहीं,
8: अंगवा की डार पे जी।
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
2: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं नारियन खेताजी और भरोला कुमावत। इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नारायण खेता जी और भरोला कुमावत के गाए लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे राधा कुलकर्णी के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सर फिल्म का ये गीत है

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार शानू का गाया फिल्म सर का ये गीत था। चांदनी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, शिवहरी का संगीत है।

0: सुरेश वाडकर के गाए फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच फोर लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं सीहोर के इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है। अन्य फैसलों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि
2: देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा। दो तरह से होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम है, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है, उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
1: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉ. यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े

0: कामों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी राज्यपाल से चर्चा की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक किसान आईडी से किसानों को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और ऋण वितरण जैसी योजनाओं को जोड़ने में मदद मिल रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी होंगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये सुविधा विदिशा जिले के बासौदा, शाजापुर जिले के शुजालपुर और आगरमालवा जिले के सोयत कलां के शासकीय महाविद्यालयों में मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने नजदीकी कॉलेज में संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलेगा। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बात करेंगे खेल की। भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में 12 राज्यों और अलग अलग क्लबों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी सेलिंग में अपने रफ्तार, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के ग्रामीण अंचलों में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और शिवपुरी जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। जिले के विभिन्न इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
4: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
2: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
5: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
2: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
6: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
2: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
7: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
9: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र

0: आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, फरमाइशकर्ताओं के नाम बताएंगे हम इस गीत के बाद। गीत है फिल्म मिलन से, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी का गीत, लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
4: सावन का महीना पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर,
4: पवन करे शोर।
5: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म मिलन का ये गीत था, सुनना पसंद किया था इस गीत के लिए। और अगले गीत के लिए मिली जुली फरमाइश करताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, गोला बाजार बक्सर से जीवत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष कुमार और आयुषी और सानवी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद, गांव भड़मूजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालवीय, मनमोहन राजावत, मधुजी, सुषमा, मंजू, बबीता और ओम प्रकाश, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चमत्कार फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा, अनु मलिक की धुन।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन के। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। छत्तीसगढ़ से दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। बरसात की रात फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज़ रोशन ने स्वरबद्ध किया है। बोल लिखे साहिर ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं शीतल, रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा की। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट की। शाजापुर से एम एम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आशा फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार की। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर रही, श्रीमती सविता गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर की। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी की। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की पसंद है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोतरी आफिया खान, राउफ भाई और शाहिद भाई की। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। शोर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच 4 लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल बंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कामों की जानकारी दी। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक किसान आईडी से किसानों को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है। और मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। रात 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सुनेंगे मुशायरा, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित होगा। शायर होंगे आरिफ अली आलिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और संचालन होगा फरमानुल्ला खां का। शायरों के नाम एक बार फिर बता दें। शायर होंगे आरिफ अली आरिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और फरमानुल्ला खां का संचालन होगा। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा रात्रि 10:00। इसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर में प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना के हितग्राही राहुल परमार एवं प्रगतिशील कृषक पशुपालन एवं डेयरी उद्योग प्रदीप परमार से मनोज सक्सेना की गई बातचीत। ये थी संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए आरंभ में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं अनुषा और मैं काजल स्वागत करते हैं आप सभी का इस भीगी भीगी सी शाम में, जहां बारिश की बूंदें घुली हैं मौसम में। और इस रिमझिम बूंदों के साथ काजल मौसम भी बहुत कुछ कह रहा है, नहीं?
1: बिल्कुल, बहुत कुछ कह रहा है। और मौसम के साथ साथ हम भी बातें करेंगे आज हमारे खास शहर पर,
0: और उसी के साथ कई सारे और भी अन्य विषय हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
1: पर उससे पहले आज के प्रश्न हम आपको बता देते हैं और आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मन को शांत करने वाली संगीत आधारित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैं दोहरा देती हूँ कि मन को शांत करने वाली संगीत आधारित प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
0: और श्रोताओं, आज का दूसरा प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला है?
1: जी हाँ, तो आशा है कि आप इनका जवाब ढूंढ कर रखेंगे और अंत में हम आपको इनके उत्तर बताएंगे। वैसे अनुषा, ऐसे मौसम में मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई एक कविता, और उसे और उनके शब्द हैं कि अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल,
0: हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली,
1: भीग रहे हैं खेत बाग वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भीगूं, चाह रहा है मेरा मन।

0: कहीं पहाड़ों की हरियाली है, कहीं घने जंगलों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल है, तो कहीं वन्य जीवन की अनोखी दुनिया।
1: मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान केवल एक प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और लोक जीवन के खूबसूरत मेले के रूप में होती है। ये शहर है सतपुड़ा की गोद में बसा मोगली की धरती के नाम से मशहूर सिवनी।
0: सिवनी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और सतपुड़ा पठार के एक सकरे उत्तर दक्षिण विस्तार में बसा है। सिवनी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,758 वर्ग किलोमीटर है।
1: सिवनी जिले का एक बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से आच्छादित है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले के लगभग 37% क्षेत्र में हरित वन क्षेत्र है। यही कारण है कि सिवनी की पहचान प्रकृति और वन्य जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है।
0: और इसी के साथ सभी के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर सिवनी ये नाम आया कहाँ से। तो एक मान्यता है कि सिवनी नाम सियोना या गुदीना नामक पेड़ से जुड़ा है जो इस क्षेत्र में पाया जाता था, और इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से ढोलक बनाने में किया जाता था।
1: क्या बात है। और हालांकि सिवनी के नाम को लेकर दूसरी ऐतिहासिक धारणाएं भी मिलती हैं, किसी समय इस क्षेत्र को सैन्य छावनी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, और अंग्रेज द्वारा छावनी शब्द से सिवनी का जो नाम है वो वायुपत्ति की संभावना बताई जाती है। यानी नाम को लेकर एक से अधिक धारणाएं हैं।
0: अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो सिवनी क्षेत्र का संबंध गौंड राजाओं के शासन से रहा है, और बाद में ये क्षेत्र नागपुर के भोसले शासकों के अधीन आया था।
1: आगे चलकर 1867 में सिवनी नगर पालिका का गठन हुआ, और स्वतंत्रता के बाद 1956 में सिवनी पुनः जिला बना। लेकिन सिवनी की सबसे लोकप्रिय पहचान शायद कुछ और ही है, और वो है मोगली की धरती।
0: और ये बड़ी ही मज़ेदार बात है, सिवनी का नाम आते ही बहुत से लोगों के मन में रुडयार्ड किपलिंग की फेमस रचना द जंगल बुक और उसका जो लोकप्रिय पात्र है मोगली, उसे लोग याद करते हैं।
1: सिवनी का पेंच क्षेत्र जो है वो उस प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा है जिसे द जंगल बुक की दुनिया से जोड़ा जाता है। लेकिन सिवनी और पेंच के जंगलों को मोगली की कथा से जोड़कर देखा जाना ही इसकी एक खास पर्यटन पहचान बन चुकी है, यानी कि द लैंड ऑफ मोगली।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, सिवनी केवल एक शहर नहीं है, ये सतपुड़ा की हरियाली है, ये जंगलों की कहानी है, ये इतिहास की परतें हैं, और ये मोगली की कल्पनाओं से जुड़ी एक अनोखी पहचान भी है।
1: लेकिन सिवनी की कहानी इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस कहानी में एक नदी है, एक विशाल जलाशय है, प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक स्थल हैं, और जंगलों में विचरते बाघ भी हैं।
0: और इन्हीं सबको हम आगे जानेंगे और पहुंचेंगे पेंच के जंगलों से लेकर बेनगंगा के उद्गम तक, और जानेंगे कि सिवनी पर्यटन, प्रकृति और संस्कृति के लिहाज से कितना खास है।

0: श्रोताओं, पिछले भाग में हमने जाना सिवनी का इतिहास, भूगोल और उसकी पहचान के बारे में। लेकिन सिवनी जिले की सबसे बड़ी पहचान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्र।
1: बिल्कुल सही, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा की दक्षिणी पहाड़ियों में स्थित है और इसका नाम पेंच नदी से पड़ा है जो पार्क के बीच से बहती हुई इसे दो हिस्सों में बांटती है।
0: पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, गौर, हिरण और अनेक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
1: और दोस्तों, यही वो प्राकृतिक दुनिया है जिसने सिवनी को वन्यजीव पर्यटन के नक्शे पर खास पहचान दिलाई है।
0: पेंच का जंगल केवल वन्य जीवन देखने की जगह नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का उस समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है जहाँ पे जंगल, नदियाँ और वन्य जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: और यहाँ एक ऐसी नदी है जो सिवनी से निकलकर आगे बढ़ती है और मध्य भारत के बड़े नदी तंत्र का हिस्सा बनती है और वो नदी है बेनगंगा नदी।
0: बेनगंगा का उद्गम सिवनी जिले के मुंडारा गांव में माना जाता है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियों में गिना जाता है। सिवनी में संजय सरोवर बांध भी महत्वपूर्ण है जो सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोगी है।
1: और इसी के साथ यहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थल भी हैं, जैसे मठ मंदिर, सूर्य मंदिर, अष्टाका, 13वीं शताब्दी का काली मंदिर, आदिगांव का काल भैरव मंदिर, दिघोरी का श्री गुरु रत्नेश्वर धाम और भी कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी सिवनी में कई महत्वपूर्ण स्थान है। तुरिया का शहीद स्मारक, आदिगांव का किला, छपारा की गढ़ी, दीवान महल और वावड़ी जैसे स्थल इस क्षेत्र के अतीत की कहानी बताते हैं।
1: और अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है तो अमोदागढ़, सिद्धघाट, पैली और दलसागर जैसे स्थान भी सिवनी की यात्रा को खास बनाते हैं।
0: साथियों, सिवनी की एक और महत्वपूर्ण पहचान है जिसका जनजातीय और ग्रामीण जीवन है। और उपलब्ध 2011 के आंकड़ों के अनुसार जिले की कुल आबादी लगभग 13,79,000 थी और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 5,20,000 दर्ज की गई थी। जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका भी है।
1: यानी देखा जाए तो सिवनी को समझना है तो केवल शहर को देखना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए जंगलों को देखना होगा, नदियों को समझना होगा, गाँव में जाना होगा, आदिवासी संस्कृति को महसूस करना होगा और उन ऐतिहासिक स्थलों को देखना होगा जो इस क्षेत्र की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है।
0: और शायद यही सिवनी की सबसे बड़ी खासियत है जो सिवनी को केवल नक्शे पर एक स्थान नहीं बल्कि अपनी अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान देती है।
1: तो अगली बार जब मध्य प्रदेश के किसी शहर की यात्रा का मन बने तो सिवनी को केवल रास्ते में पड़ने वाला शहर मत समझिएगा।
0: ये वो जगह है जहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जंगल की नीरवता है, बैनगंगा की धारा है, पेंच के बाग हैं और इतिहास की अपनी एक अलग ही कहानी है।

0: आज हम उस मेहमान की बात करेंगे जो बिना बुलाए हमारे दिमाग में आकर बैठ जाता है।
1: और मैं समझ गई कि तुम किसकी बात कर रही हो अनुषा, और वो रिश्तेदार नहीं है बल्कि वो है ओवरथिंकिंग।
0: बिल्कुल सही, तुमने सही समझा।
1: और बिल्कुल, तो इसका जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा मैसेज ले, उसका रिप्लाई लेट आ जाए तो हम सोचने लगते हैं क्या वो नाराज़ है, या फिर इंटरव्यू के बाद अगर जवाब ना आए तो हमें लगता है कि शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस बार, और रात में सोने जाएं तो 5 साल पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं।
0: सच कहूँ तो हमारा दिमाग कई बार नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा एपिसोड बना लेता है, और वो भी बिना किसी सबूत के।
1: बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोचना और ओवरथिंक करना दो अलग अलग बातें हैं। सोचना हमें समाधान तक पहुंचा सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग हमें एक ही जगह पर बार बार घुमाती रहती है,
0: और इसका असर सिर्फ मूड पर नहीं पड़ता, पढ़ाई, काम, रिश्ते, हमारे कॉन्फिडेंस, सब पर असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए।
1: सबसे पहला तरीका, अपने विचारों को पहचानिए। जब भी दिमाग में कोई डर या कल्पना आए, खुद से पूछिए क्या ये सच है या सिर्फ मेरा अनुमान है। कई बार हमारा दिमाग हर संभावना को खतरा मान लेता है।
0: और दूसरी बात, हर समस्या का हल उसी समय नहीं मिलता। अगर कोई बात आपके नियंत्रण में है तो उस पर काम कीजिए, अगर नहीं है तो उसे बार बार सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है।
1: और तीसरी बात, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। थोड़ी वॉक, थोड़ा संगीत, किताबें, ड्राइविंग या फिर ड्राइंग, या किसी अपने से खुलकर बात करना, क्योंकि कभी कभी मन को समाधान नहीं, साथ चाहिए होता है।
0: और एक छोटी सी आदत बहुत मदद करती है, जो बातें दिमाग में घूम रही है उन्हें कागज़ पर लिख दीजिए। जब हमारे विचार बाहर आ जाते हैं तो उनका बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाता है।
1: हाँ, एक और ज़रूरी बात, ओवरथिंकिंग अक्सर हमें भविष्य की चिंता या बीते हुए कल में उलझा देती है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा आज में चल रही होती है।
0: और अगर आपको लगे कि ये चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी नींद, पढ़ाई, काम या रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में बिल्कुल भी मत झिझकिए। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है बल्कि समझदारी है।
1: याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, और हर सवाल का जवाब अभी मिल जाना ज़रूरी भी नहीं होता।
0: तो दोस्तों, अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए, उसे थोड़ी दिशा दीजिए और थोड़ी राहत भी।
1: इसी उम्मीद के साथ कि आज के बाद आप अपने विचारों को थोड़ा सा हल्केपन से देखेंगे और लाइफ को थोड़ा चिल तरीके से लेंगे।

0: दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन युवाओं के जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। और विषय है बचपन में देखी गई हिंसा और आक्रामकता, और इसका आजकल के युवाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और कई बार हम सोचते हैं कि आखिर इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, और हम जान भी नहीं पाते।
1: तो ये बहुत ही गंभीर बात है। तो दोस्तों, बचपन में हमारे व्यक्तित्व की नाव, बचपन जो है वो हमारे व्यक्तित्व की नाव की तरह होती है। बच्चे अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। यदि वे घर, स्कूल, समाज या मीडिया में बार बार हिंसा, झगड़े, गाली गलौज या आक्रामक व्यवहार देखते हैं, तो इसका असर उनके मन पर पड़ सकता है।
0: बिल्कुल, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन के अनुभव व्यक्ति के व्यवहार को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। और कई बार हिंसा देखने वाले बच्चे बड़े होकर या तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डर, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी का शिकार हो जाते हैं।
1: ऐसे युवाओं में गुस्सा नियंत्रित करने में कठिनाई, रिश्तों में तनाव, पढ़ाई या काम पर ध्यान न लग पाना और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ मामलों में वो दूसरों पर भरोसा करने से भी डरते हैं।
0: और ऐसी ही कुछ जब हमें दिखाई देता है तो हम ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को या तो काजल जनरली इंट्रोवर्ट बोल देते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं जान पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें दबाने के बजाय किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करना।
1: बिल्कुल, क्योंकि चुप रहने से समाधान नहीं निकलता, पर कई बार बातें करने से समाधान निकल जाता है। इसलिए परिवार, मित्र, शिक्षक या काउंसलर से खुलकर बात करना बहुत ही मददगार हो सकता है ऐसे केसेस में। जब हम अपनी परेशानियां व्यक्त करते हैं तो मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, और जैसा कि शुरुआत में कहा था हमने कि समाधान के रास्ते भी खुल जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे योग, ध्यान, नियमित व्यायाम करना, संगीत या फिर पुस्तकें पढ़ना और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। ये सभी जो है तनाव और आक्रामकता को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं।
1: इसके साथ सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधनों का भी सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। लगातार हिंसक सामग्री देखना हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी युवा को बार बार गुस्सा, डर, चिंता या दुख महसूस हो रहा है तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करें।
1: और इसी के साथ दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा अतीत हमें प्रभावित ज़रूर कर सकता है, लेकिन हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। सही मार्गदर्शन, सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं।
0: तो आइए हम ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां बच्चों को सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक वातावरण मिले, ताकि वे आत्मविश्वासी और संवेदनशील नागरिक बन सके।
1: और इसी के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: बहुत ही सुंदर गीत सुना अभी हमने। और अब साथियों वक्त आ गया है कि हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता दें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न था कि मन को शांत करने वाली संगीत आधारित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है संगीत चिकित्सा। तो साथियों ये बहुत ही रोचक बहुत ही दिलचस्प तरह की चिकित्सा है और इसके ज़रिए हम शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगीत का इस्तेमाल करते हैं।
1: और कई बार जब संगीत हम सुनते हैं तो कभी हमारा मूड खुश हो जाता है कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो संगीत चिकित्सा में बताया जाता है कि कौन से वक्त दिन के किस वक्त हम कौन सा संगीत सुने जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इसी के साथ आज का दूसरा प्रश्न था कि दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो अब चलिए फिर इसके बाद जल्दी से हम आज का हमारा अगला गीत सुन लेते हैं।

तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और आज थे आपके साथ काजल और अनुषा। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की इस कड़ी में आज आपके लिए लेकर आए हैं मौसम के अनुरूप कुछ भीगे भीगे से गीत लेकर। पहला गीत फिल्म धरती से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म धरती से। शब्द थे हसरत जयपुरी के और इस गीत में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

आनंद बख्शी की रचना थी ये। फिल्म का नाम अजनबी और इसे गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनुपमा से आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था कैफ़े आज़मी ने और इसमें संगीत दिया हेमंत कुमार ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को अब यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है, आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
3: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
2: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
3: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया।

0: और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू

0: और नो। ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: माता की
1: जय।
0: भारत माता की।
2: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। April 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
1: रोलेट एक्ट।

0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
1: मारो,
0: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
3: ए, ए, ए, ए, गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन!
4: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
3: शट अप! ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न,

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधे कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधे कर दे।
2: कर दिया, कर दिया।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
7: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
6: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक

0: निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह तीय अठारह।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहाँ तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
0: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको

आकाशवाणी इंदौर से सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पूर्वी निमगांवकर और उनके साथियों द्वारा गाए गीत। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत।

महादेवी वर्मा की रचना थी ये, जिसे गाया पूर्वी नीमगांवकर ने। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को अब यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उषा रायकवार के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना उषा रायकवार और साथियों के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र बस कुछ ही पलों में।

0: और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। 8:15 पर सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का समय है 8:30 और 9:15 कार्यक्रम चित्रगीत के अंतर्गत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कहकशा जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनभावन होगा रात 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विजय सरदेशमुख का गाया राग मालकौंस। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल यानी बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल सुबह 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत सुनिए भारती उपाध्याय से सोयाबीन में बढ़तवार और फूल का सटीक प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर जानकारी।

0: कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र। फिल्म संगीत का समय है 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वाति उखले और साथियों के गाए लोक गीत। 9:15 पर सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं विवेक वाघोलिकर के गाए गीत। और 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पंडित एल के पंडित का गाया राग जौनपुरी, जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 10:00। MH हॉटलाइन श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा 10:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने 11:00, फिल्म संगीत 12:00, 2:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही रिले करेंगे 12:30 पर। और महिला कार्यक्रम 1:00 तथा सुगम संगीत 1:45 पर। रोजाना शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 5:45 पर, रात 8:00 और 9:15 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:00। 6:30 पर सुनिए विवेक वाघोलिकर के गाए गीत। 6:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वाति उखले और साथियों के गाए लोकगीत। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद समीक्षा। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10:00 आप सुनेंगे कमलेश पारे का लिखा रूपक सिमटी बेचैनिया। प्रस्तुतकर्ता होंगे देवेंद्र कौर मधु और संजीव मालवीय। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का संदेश दिया।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: इससे पहले संसद में मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और एनडीए के सांसदों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का जय घोष किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को जबकि राज्यसभा ने इससे एक दिन पहले विधेयक को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। कानून के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की मंजूरी दी गई। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 1,757 करोड़ रुपए होगी और सड़क के साथ शोल्डर भी बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इछावर के और खेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने का फैसला भी किया। बैठक में जनविश्वास अभियान की भी समीक्षा की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया,
2: जनविश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में हमारा जो जनविश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की।
0: प्रदेश मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक कुल 44,515 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल और निःशुल्क दवा जाँच जैसी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएंगी। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ रुपए से ज्यादा और जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय से 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के तहत 22 लाख पात्र लाडली बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। ये राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर पीएमयूआई श्रेणी की पात्र महिलाओं को दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समग्र पेंशन योजना के तहत 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपए की पेंशन राशि भी अंतरित की। इसके अलावा डॉ. यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महोत्सव में आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत खेती के तरीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें होंगी। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बात मौसम की। प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अब तक प्रदेश में 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। खंडवा में बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में मॉनसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज के दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी जमीन में पैदा होने वाले बेहद कम आवृत्ति के कंपन को कई किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। उन्हें जंगल का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ 18 अगस्त को होगा। आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। मंदसौर में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के आगामी शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले के थांदला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 935 लीटर से ज्यादा घी जब्त किया है। बुरहानपुर जिले में इस मानसून अब तक औसत बारिश का करीब 71% पानी बरस चुका है। खंडवा जिले के सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डिमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डिमर ने भोपाल में आयोजित अश्मिता नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए प्रोविजनल रूप से चयनित यात्रियों को अग्रिम हज राशि जमा करने के लिए अब अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी भाई बहनों को अमृता की राम राम। आज खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसान भाई बहनों के लिए कुछ उपयोगी सलाह। वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित सोयाबीन की खेती के लिए प्रमुख रूप से जो क्षेत्र हैं उसमें पत्ती खाने वाली जो इल्लियां हैं, विशेषकर तंबाकू की इल्ली और हरी सेमी लूपर इल्ली तथा चक्रभृंग और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। अतः फसल में आर्थिक रूप से हानि करने वाले इस जैविक कारकों का नियंत्रण हेतु कुछ उपाय जो हैं वो है अपनाने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि कौन सी इल्ली का प्रकोप है। यदि तंबाकू की इल्ली का प्रकोप है तो उसके नियंत्रण के लिए क्लोरेंट्रा निलेप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। वैकल्पिक रूप में आप स्पाइनेटोरम 11.7 SC 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टीन बेंजोएट का या फिर फ्लूबेंडियामाइड 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर सेमी लूपर इल्ली है तो उसके नियंत्रण के लिए क्लोलेप्ट्रा निलेप्रोल 18.5 SC यानी 150 ml प्रति हेक्टेयर या फिर इमेमेक्टीन बेंजोएट 1.90 यानी 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव आप कर सकते हैं। चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु फसल पर इंडोक्साकार्ब 15.80% यानी 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियां यानी सेमी लूपर, तंबाकू और चने की इल्ली, इन सभी इल्लियों का एक साथ नियंत्रण हेतु आप स्पाइनेटोरम 11.7 SC यानी 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या फिर क्लोलेंट्रा नेलेप्रोल 18.5 यानी 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव आप कर सकते हैं। चक्रभृंग के लक्षण दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में ही इसके नियंत्रण हेतु थाइक्लोप्राइड 21.7 SC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। अब कुछ सामान्य सलाह की बात कर लें। सूखे की स्थिति में भूमि में दरारें पड़ने के पूर्व ही परिस्थिति अनुसार स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई या फिर परंपरागत विधियों से सिंचाई करें। अपने खेत की नियमित निगरानी करें। पौधे की ठीक से अलग अलग स्थान पर जो है नियमित जांच करते रहें कि कहीं कीट या इल्ली का प्रकोप तो नहीं। सोयाबीन की फसल में पक्षियों के बैठने हेतु टी आकार के बर्ड पर्चेस लगाएं। इससे कीट भक्षी जो पक्षी हैं उसके द्वारा इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है। किसी भी प्रकार का कृषि आदान क्रय करते समय दुकानदार से हमेशा पक्का बिल लें जिस पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट स्पष्ट लिखा हो। ऐसे रसायन जो सोयाबीन फसल में उपयोग हेतु भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा जारी जो सूची है उसमें शामिल नहीं है, उसका उपयोग कभी ना करें। ये थी सोयाबीन उत्पादन के लिए उपयोगी कुछ सुझाव। और अब क्यों ना एक पारंपरिक लोकगीत सुन लिया जाए जिसे गाया मनसे भोंडिया और मंडली ने।

0: कार्यक्रम खेती गृहस्थी में अभी आपने सुना मन से भुंडिया और मंडली के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं, आज्ञा दें अमृता को, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के लिए।
1: किसान वाणी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी,

0: वाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान बानी कार्यक्रम में सभी किसान भैया बहनन को रीता बहन की राम राम। भैया बिन्ना हरो, औषधीय पौधा जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, सर्वगंधा और स्टीविया जैसे कई पौधा होते हैं जे पौधा दवाई बनाने में उपयोग करे जाते हैं। अच्छी बात है कि औषधियों की खेती कम लागत और कम पानी वाले क्षेत्र में भी बम्पर उत्पादन और मुनाफा देते हैं। आज के समय में फार्मास्यूटिकल्स उद्योगन में ई की लगातार मांग बढ़ रही है। सरकार के द्वारा ई पर किसानन को विशेष सब्सिडी दी जाते। औषधि पौधन की खेती करवे को सबसे बड़ो फायदा होते के जे कम उपजाऊ और बंजर जमीन पे भी आसानी से उग सकत है। संग में कम खाद और कम कीटनाशकन की आवश्यकता होते ये उगाए के लाने। आज के समय में जड़ी बूटियों की भारी मांग है ए के लाने। सरकार भी किसानन को कई योजनाएं बना के देते है जिसे कि किसान फसलों की खेती कर सके और आसानी से बाजार में बेच के लाभ कमा सके। उन्नत है विषय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हितग्राही राहुल परमार से बातचीत। स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित ई कार्यक्रम में बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के माध्यम से लगातार आपके लिए ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, आप जिन्हें आइकॉन बना सकते हैं अपना, क्योंकि ये वे किसान हैं जो बहुत छोटे स्तर से चलकर आज एक ऐसी ऊंचाई पर आए हैं कि लोग उन्हें उनके उस काम से, उस नाम से जानने लगे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ राहुल परमार जी से। भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हीरापुर गांव के किसान हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और आज पूरे प्रदेश में उनका एक नाम है। उनका काम जो किया गया है उसकी एक पहचान है मालवा फिश हैचोरी के नाम से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
3: मैं सबसे पहले तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा।
4: मेरा नाम राहुल परमार है, मैं ग्राम हीरापुर से हूँ, जिला सीहोर से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाया गया है
3: जी।
4: इस प्रोजेक्ट में मूलतः मछली के बीज का उत्पादन होता है
3: जी।
4: हाँ, और ये अभी लगभग 10 एकड़ के आसपास में है और यहाँ से आसपास के 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहाँ के किसान हमसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं और उनके बड़े बड़े जलाशयों में मछली का बीज जाता है।
3: मैंने जब पूरा ये आपका फार्म देखा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, कुछ बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं, पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं, इन सब में कितने पॉन्ड्स हैं और कितना काम होता है इस पर?
4: देखिए, ये हैचरी एक टेक्निकल चीजें हैं ये बिल्कुल। और जैसे आपने यहाँ देखे होंगे करीबन 17-18 तालाब हैं, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग है, किसी की डेप्थ ज्यादा है, किसी की कम है, तो ये अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मत्स्य प्रजनक के, कि जिन मछलियों के माध्यम से हमें अंडे और बीज प्राप्त होते हैं तो उनको मत्स्य प्रजनक कहा जाता है। तो ऐसे प्रजनक रखने के लिए तालाब की गहराई होती है 6 से 8 फीट, यानी गर्मी में उनको ठंडक बनी रहे, पानी गर्म ना हो। और उन तालाबों का साइज भी बड़ा है क्योंकि जिसमें अच्छे से बड़ी मछलियां घूम पाए, क्योंकि वो साल भर हमें रखनी होती है और पानी का एक लेवल भी मेंटेन करना होता है। और जो आपने छोटे तालाब देखे हैं उनको कहते हैं नर्सरी पॉन्ड, जिनमें हम जो छोटी मछली के बीज होते हैं जिन्हें जीरा या स्पॉन कहते हैं, तो उनको हम 8 से 9 दिन उन तालाबों में रखते हैं। अच्छा। और वो बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी एक ही तालाब में 12-15 लाख मछली के बच्चे रहते हैं। फिर जब उनका थोड़ा सा साइज आधा इंच के आसपास आता है 9 से 10 दिन में, तब हम उसको पलटी करते हैं, तो फिर वो रेयरिंग पॉन्ड में जाते हैं। रेयरिंग पॉन्ड का मतलब कि उनकी गहराई, तालाबों की गहराई 4 फीट के आसपास रहती है और बच्चा जैसे ही 1 इंच के आसपास होता है तो फिर किसान बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनमें ले जाना शुरू कर देते हैं।
3: अब इस समय जो आपका जो बीज है मछली का, ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है?
4: देखिए, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा शुरू से कि मछली बीज के सीजन शुरू होता है आपके मई के आसपास से।
3: ठीक।
4: मई से पहले प्रजनकों को अच्छा आहार संतुलन सब कराया जाता है। मई के समय में कुछ मछली जैसे ही मानसून आने वाला होता है ब्रीड के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही बारिश आना शुरू हुई और बड़े किसानों के तालाबों में पानी आया, जैसे बड़े बड़े जो जलाशय हैं, तो वो जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट महीने में बीज की शुरुआत हो जाती है, तब किसान लेने आते हैं।
3: इतने लंबे समय तक इनको संरक्षित रख पाना, उनकी खान खुराक, ये सब कैसे मैनेज होता है?
4: देखिए, बच्चा जैसे ही उत्पादन हुआ उसका, तीसरे दिन से उसका भोजन शुरू हो जाता है। अगर आपका आहार प्रबंधन सही नहीं है तो आपको आपके तालाब में 10 लाख बच्चा दिख रहा है, ठीक, आप इसके 4 से 5 दिन बाद देखेंगे तो आपको हो सकता है वो आधा ही मिले, 5 लाख मिले, मर जाता है। उस नर्सरी पॉइंट में मेंढक का बच्चा तो नहीं आ गया, या कोई कीट पतंग जो पानी वाले हैं वो तो नहीं आ गए, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तालाब का प्रबंधन में तालाब को सुखाया जाता है और महुए की खली का छिड़काव होता है ताकि उसके कीट पतंग सब मर जाए, क्योंकि दवाई का प्रयोग करोगे, दवाई का असर रहेगा तो फिर वो बच्चों पे भी नुकसान करेगा। फिर उसमें प्लैंकटन कैसे बने जो मछली के लिए प्राकृतिक आहार होता है, एक सफेद छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत माइक्रो लेवल पे, उसको मछली का बच्चा खाता है, तो उसको कैसे डेवलप कर ले, तो वो एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया है, यानी किसी चीज में हल्का सा सड़न की जो प्रक्रिया शुरू होगी तो वो जीभ को मछली का बच्चा खाता है, तो वो बनाना पड़ता है, तो 2 से 3 दिन बाद ये प्लैंकटन विकसित हो जाते हैं और मछली के बीच वो खाते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई बड़े बच्चों को हमारा किसान क्या खिलाएं, तो फिर वो उसके लिए कमर्शियल फीड भी आते हैं, तो कुछ घर भी बनाते हैं, कुछ रेडीमेड कंपनी से लाके भी खिलाते हैं।
3: पूरी लेंथ में आने में अपनी मछली को कितना समय लग जाता है?
4: देखिए, वो जलाशय पे निर्भर करता है और खाना खुराक पे निर्भर करता है। किसान जितना समझदार होगा, होशियार होगा खाना खुराक के प्रति, वो उसका संचयन उस तरीके से करेगा तालाब में, यानी अगर अगर ज्यादा मात्रा में हाई डेंसिटी में मछली बीज का संचयन किया तो मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, बच्चा जिंदा रहेगा लेकिन बच्चे का साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सरकारी मानक है कि इतने हेक्टेयर पे इतने हजार बच्चे डालना चाहिए, तो सरकार ने ये मानक तय किए हुए हैं, कई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उन्हें बताएं। अगर किसान उस शासकीय मानकों के अनुरूप मछली बीज डालेगा तो फिर ये निश्चित ही है 4 से 5 महीने के अंदर आधा किलो प्लस साइज उसको देखने को मिलेगा और उसकी उसी समय से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो हार्वेस्टिंग करता रहेगा, रोज 10-20 किलो 50 किलो या 1 क्विंटल निकाला, तो उसका साल भर रोजगार रहेगा, क्लोज सीजन रहता है उसको छोड़ के, तो बाकी उसकी आजीविका वो अच्छे से चला सकता है, पर इसमें डेंसिटी का विशेष ध्यान रखना है उसे।
3: अच्छा, हर किस्म की मछली के लिए अलग डेंसिटी तय होगी?
4: नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे इंडियन मेजर कार्प है, ये 6 मछलियां हैं, जैसे कतला, कामन, ग्रास, रेहू, नरेन, मृगल, ये 6 फीट पानी में अगर हम लेयर की बात करें तो कतला सबसे ऊपर और कामन कार्प सबसे नीचे, यानी आदर्श स्थिति ये 6 फीट पानी तो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो, तब इन मछलियों को 40-30-20 के अनुपात में डाला जाता है। अगर एक ही तरीके की मछली ज्यादा डाल दी तो फिर उसमें दूसरी मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, इसलिए इसका अनुपात आवश्यक है।
3: रंगीन मछली के लिए क्या करना होगा?
4: रंगीन मछली यूनिट हमारे पास हैचरी है रंगीन मछली यूनिट की भी, और इसका प्रोडक्शन भी होता है, अभी काम हमारा कुछ चालू भी है इस पे, और हमने ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी ब्रिड जैसे मोली, गप्पी, गोल्डफिश, चिकलेट, कोई कार्प, ये सब मछलियों का हमने प्रोडक्शन भी किया है, तो हमें समझ में आया कि अपने क्लाइमेट में ये मछली सरवाइव कर जाती है, तो फिर हमने इस यूनिट को लिया और अब हम इसका उत्पादन करके पास के मार्केट में इसकी सप्लाई करेंगे, और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बाहर से ज्यादा बच्चा ना आए, छोटे छोटे किसान

0: यही उत्पादन करें, तो हम ऐसे किसानों की कुछ चेन भी बना रहे हैं,
1: जी
0: तो जिससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो। क्योंकि क्या है, व्यक्तिगत तौर पे तो आप यूनिट बना ली, आपको लाभ हो रहा है, पर भाई शासन की मंशा है कि हमारा किसान सशक्त बने। तो हमारा ये उद्देश्य है, इस यूनिट पे कई किसानों विभाग के माध्यम से भी आते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये स्टार्टअप मॉडल को समझते हैं और किस तरीके से इस मॉडल से जुड़ के वो उनकी आय बढ़ा सकें। कई कॉलेजों यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू भी है, जैसे वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या निरंतर एग्रीकल्चर फील्ड के जो बच्चे होते हैं उनका रावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। तो उन स्टूडेंट को भी जब उनकी पढ़ाई होगी तो उन्हें स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी, उनको
1: बिल्कुल
0: बिजनेस मॉडल आज समझेंगे, और ये मॉडल अगर वो अपने जिले में करते हैं तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे रोजगार पैदा होगा। और पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अगर किसान काम कर रहा है तो बहुत तकनीकी रूप से काम करेगा, तो उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
1: राहुल जी, आखिरी सवाल, टर्नओवर कितना
0: देखिए, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, आप कितना कमा लेते हैं, जबकि
1: है?
0: 5 साल हो गए हैं हमें। आप यकीन मानेंगे, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हम इसी व्यवसाय में तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि हमें व्यवसाय लगातार बढ़ाना है। हमने ये 2.5 एकड़ से शुरू किया था और आज करीबन 11-12 एकड़ में हमारी निजी भूमि में तालाब है, बाकी हम ऐसे 500-700 एकड़ तालाबों से जुड़े हुए हैं। कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जैसे कई समिति वाले ऐसे होते हैं उनके पास पैसे का अभाव है, तो हमने उनसे किसी तरीके का एक टाई अप कर रखा है कि भाई आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन आप हमें देंगे तो हम इसमें आपको बच्चा मुफ्त दे देंगे, और किसी तरीके का आर्थिक वो चाहिए तो ऐसा सहयोग कर देंगे। मतलब इसको पार्टनरशिप ना कह के एक सहयोग के रूप में। तो इस तरीके से आज हमारे पास रकबा 500 से 700 एकड़ रकबा हो चुका है, जिसमें हम डायरेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी,
1: अगला पड़ाव क्या है अब आपका?
0: अगला पड़ाव यही है कि जो हमारे ऐसे तालाब जिनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, इनको किस तरीके से हम मछली के बड़े बीज उपलब्ध करा सकें,
1: वाह,
0: ताकि ये 12 मासी जलाशय की तर्ज पर उन जलाशयों में भी मछली का उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ कुछ बड़े जलाशयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पैन कल्चर और इस प्रकार की कुछ पद्धति अपनानी होगी जो इस क्षेत्र में नवाचार का काम करेगी। तो कुछ जगह हुआ भी है, कुछ जगह असफल भी हुआ है, तो हम उसी पे थोड़ा और अध्ययन करके और किस तरीके से इसको जोड़ सकें, और जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े डैम हैं इनसे कैसे कनेक्ट करके हम इस नीली क्रांति में सहभागी बने और मध्य प्रदेश में इस अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों पे ले जाएं।
1: हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बिन्नहरो, अब सुना थे एक श्रृंगार गीत, जी गाँव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

0: वो अनरत लाल बैरसिया ने। भैया बिन्नाहरो अब सुनत हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। विषय है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और ई योजना में जो हितग्राही वे हैं प्रदीप परमार जो के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला सीहोर से हैं और इनसे बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने जो एक स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये भोपाल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है हीरापुर। जी हाँ, हीरापुर आज पहचाना जाता है दूध के क्षेत्र में। नाम हीरापुर है लेकिन यहाँ दूध का उत्पादन हमारे साथ जो सफल कृषक हैं, उन्नत कृषक हैं, वे कर रहे हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये दूध का जो बड़ा कारोबार खड़ा किया गया है इसके पीछे उनका संघर्ष क्या है, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया कि आज क्षेत्र में इनकी डेयरी को जाना जा रहा है। हमारे साथ हैं गोरेलाल जी परमार।
2: नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम है गोरेलाल जी परमार, ग्राम हीरापुर, तहसील जिला सीहोर में दूध का कारोबार करता हूँ। छोटे से उससे स्तर से मैंने स्टार्ट करा और सीहोर में भी हमारा एक काउंटर है छोटा सा और अगल बगल से दूध भी लाते हैं और सब मतलब जो है सिस्टम पशुओं की देखभाल, नए पशु लाना ले जाना और दूध का मावे का सब घी वगैरह का भी सब कारोबार शुरू करा है हमने और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा कारोबार चल रहा है हमारा और अच्छा लग रहा है हमें।
1: गुरुलाल जी, जैसा कि हम आपका ये कारोबार पूरा देख रहे हैं, काफी नाम है और बहुत सारी मैं देख रहा हूँ मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारे आपने सब संयंत्र लगा रखे हैं। ये जो शुरुआत आपने की थी वो कब की थी आप?
2: मेरे को ये तो जानकारी नहीं है और मेरे को 40 साल लगभग होगा।
1: जी, तो 40 साल पहले जब शुरुआत करी होगी तो आपने किस तरीके से काम शुरू?
2: मैंने पैदल दूध लाया ग्राम पीपलनेर से और हाथ में डिब्बे और सिर पे रख के, रोड का भी साधन नहीं था।
1: अच्छा।
2: फिर साइकिल ली, धीरे से साइकिल से दूध लाया, साइकिल से ही मैं सीहोर ले गया और बंदी होन लगाई, क्वार्टर बंदी होन बांटी सीहोर में मैंने, होटल होन पे दूध दिया, फिर एक छोटा सा काउंटर लिया और वहाँ दुकान डाल के अब आहिस्ता मतलब सब काम मतलब वहाँ से शुरू
1: किया।
2: जी,
1: मतलब आपने 40 साल का संघर्ष इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमें दिखाई दे रहा है।
2: हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा है साहब, बहुत बड़ी क्या
1: जी, जी, जी।
2: ये हाँ मतलब
1: अच्छा,
2: जो है
1: एक चीज और है
2: जी
1: कि पहले जब आप कह रहे हैं ना कि सिर पर दूध रख के हम ले जाते थे,
2: जी जी,
1: संसाधन बढ़े, सड़कें अच्छी हो गई, फिर आपके वाहन भी बढ़ाए होंगे आपने,
2: हाँ,
1: तो उस समय कितनी गाय आपके पास होती थी?
2: उसमें लगभग हमारे पास में 20 से 25 थी, फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाई तो आज हमारे पास 100 से 150 जानवर भी हैं और लोगों को हमने अगल बगल जो अपने सदस्य हैं उनको दिलवाए भी, हाँ, सबको मतलब जो है रोजगार से लगाया हम लोगों ने, हाँ, और बच्चे उनको भी लगाया, बच्चे आज ऊंची स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम हैं भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर हीरापुर गांव, जहां की गोरेलाल दूध डेयरी है वहां पर हैं। हमने गोरेलाल जी से भी बात की कि उन्होंने किस तरीके से इस डेयरी की शुरुआत की थी। कहते हैं ना कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कारोबार जाता है तो वह किस तरह से बढ़ता है, उसका प्रमाण यहां देखने को मिलता है। उनके बेटे हैं हमारे साथ प्रदीप परमार जी। प्रदीप जी, पिताजी ने कारोबार शुरू किया, फिर आप लोग बड़े हुए, आपने उस कारोबार को बढ़ते हुए देखा, फिर आज आपने संभाल लिया है।
3: जी बिल्कुल।
1: आपने क्या क्या बदलाव कर दिया इसमें?
3: हमने बदलाव जैसे पापा पुराने तरीके से चीजें करे जा रहे थे,
1: जी,
3: आज हमने उसको एकदम नए तरीके से कर दिया है। जैसे कि अभी पशुपालन में हम जैसे गिर, साहिवाल पे इस पे काम कर रहे हैं, A2 दूध पे हम काम कर रहे हैं, इसका जो घी बनेगा वो मार्केट में जाए, अच्छी चीज पहुंचे, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं, पैकिंग हमारी अच्छी हो। और अभी जैसे हमने उद्यानिकी विभाग के द्वारा एक प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है जिसमें हम दूध से बने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मावा, घी, पनीर, दूध, रबड़ी और अन्य तरीके की मिठाइयाँ, वो सब हम बनाने का हमारे यहाँ इस प्लांट में पूरा काम कर रहे हैं इसी में।
1: अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए मुझे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जब शुरुआत थी तो वाकई पैसे का अभाव होता था, सरकारी योजनाओं का आपने लाभ लिया होगा, कौन सी योजना आपने ली जिससे कि आपको मदद मिली?
3: हमने योजना पीएमएफई योजना के अंतर्गत ये हमारा लोन हुआ है, उसी से हमने ये प्लांट का प्रोसेसिंग मशीन है उसी के अंतर्गत लगाई गई है।
1: अच्छा अच्छा जी। दूध उत्पादन आपके पास प्रतिदिन कितना हो जाता है?
3: दूध प्रतिदिन 2.5 से 3 हजार लीटर दूध हो रहा है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट किसान भी जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा।
3: हाँ, जैसे हमारे कलेक्शन पॉइंट है 2-3 गांवों में, तो जो भी किसान जिसके पास भी मवेशियां होती हैं तो वो हमें कलेक्शन पॉइंट में दूध ला कर देते हैं, बस वो हम कलेक्ट करते हैं और उसी का हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पूरा प्रोसेसिंग।
1: 2.5 से 3 हजार लीटर आपका दूध हो जाता है, फिर इसको आप बाजार में बेचते हैं?
3: हाँ, बाजार में बेचते हैं। इसके दूध जाता है वो अलग है, इसके हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं।
1: कौन कौन से?
3: जैसे मावा, पनीर, दही और मिठाइयाँ, तो ऐसे अन्य तरीके के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हमें
1: उससे आगे आपको सहायता मिल रही
3: जी जी।
1: गुणवत्ता को आप कैसे ध्यान में रखते हैं? क्योंकि दूध की शुद्धता को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे अभी प्लांट में हम पूरा मतलब केप पहनाकर, ग्लव्स पहनाकर और सारी चीजें हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन 100% रहता है।
1: जैसे मैं अभी देख रहा था कि आपके यहाँ कुछ नया काम भी चल रहा है, अभी कुछ नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ नई मशीन्स आ रही हैं।
3: जी जी जी।
1: तो ये क्या है?
3: ये अभी जो पुराने हम जो और हम हाईटेक मशीनों में जा रहे हैं।
1: अच्छा।
3: जैसे कि बहुत जल्द काम हो जाएगा, जैसे 1 घंटे का काम हम 1/2 घंटे में कर लेंगे, तो इस तरीके की हम कुछ अच्छी मशीन लेकर आ रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें मशीन को चेंज करना पड़ा।
1: आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद हम और पढ़ाई करते और कुछ नया कुछ करते और फिर हम जाके कहीं बड़ी कंपनी में नौकरी करते, वो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है?
3: ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारा खुद का है, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पिताजी ने इतना किया है तो हम उसको और आगे बढ़ाएं। तो यही हम कोशिश करते हैं कि ये इसको हम बड़ी कंपनी बनाएं।
1: वाह। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है?
3: मैं ग्रेजुएशन है, बीबीए किया है मैंने।
1: बीबीए किया हुआ है। मित्रों, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें और उससे खुद का रोजगार तैयार करें, हम खुद स्वरोजगार बने और लोगों के लिए रोजगार दें। कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे
3: हैं? हमारे यहाँ अभी 20 से 25 लोग तो फार्म में हैं, बाकी और जो हमारे कलेक्शन पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो ऐसे करके हमें कम से कम 40-50 लोग इनडायरेक्ट जुड़े हुए
1: जी काम कर रहे हैं।
3: हाँ।
1: मतलब आपने 40 से 50 लोगों को रोजगार।
3: हाँ, और बाकी अगर ऐसा अगर अपन किसान और सारा उसको देखा जाए तो ऐसे तो 300-400 लोग जुड़े हुए हैं।
1: वाह। अच्छा, मार्केटिंग का सूत्र क्या है आपके पास?
3: मार्केटिंग का यह है कि हम खुद ही मतलब होम डिलीवरी देते हैं। अगर कोई हमें कस्टमर बोलता है कुछ, तो हम डायरेक्ट हम उनके पास हम खुद ही जाकर देकर आते हैं।
1: अच्छा, अच्छा
3: जी जी।
1: अच्छा, कभी कोई किसी कस्टमर की शिकायत आ गई कि उनका दूध फट गया?
3: हाँ जी,
1: होता है ना।
3: हाँ, बिल्कुल होता है।
1: कई लोगों को संतुष्टि नहीं हो पाई, तो फिर आप उसे कैसे संभालते हैं?
3: वो उनको फिर संभालना थोड़ा सा समझाना पड़ता है। हाँ, बहुत मतलब उनको समझाना पड़ता है कि भैया कुछ हो गया होगा, गलती हो जाती है, या कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम सर्फ से बर्तन धोना या उसमें कुछ छूट जाता है तो उससे भी दूध फट जाता है,
1: वो उससे एंड पर भी हो सकता है।
3: हाँ हाँ, वो तो या तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो या उनसे कोई, तो दोनों से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है।
1: मतलब इसमें विनम्रता बहुत जरूरी है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें बात बिगड़ सकती है फिर अगर गड़बड़ होता है।
1: अच्छा, जैसे इतने सारे पशु आपके पास हैं, आपने कहा साहीवाल हमारे पास है, गीर भी आपके पास रहती हैं, अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस नस्ल को आपने अच्छा माना?
3: साहीवाल और गीर को, जो कि हमारे फार्म में है।
1: अच्छा अच्छा
3: जी, अच्छे जी। अच्छे दूध। हाँ, अच्छे दूध और इसकी मार्केट में डिमांड भी है।
1: एक आदर्श डेयरी बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं होना और किस किस बात का ध्यान रखना जरूरी है?
3: आदर्श डेयरी बनाने के लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि पशु के लिए हमें एक पशु के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, उसके लिए अगर बैठने के लिए हमें एकदम पक्का नहीं होना चाहिए, उसके लिए कच्चा भी होना चाहिए और शीट उसके नीचे एक शीट डली हो ताकि उसको बैठने के लिए आसान हो जाए। तो शीट का एक माप होता है 4x6, तो एक पशु के लिए इतनी जगह सफिशियंट होती है। उसके स्वस्थ रखने के लिए उसको नहलाना पड़ता है क्योंकि मक्खी ना बैठे, और ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि
1: ऐसा कहते हैं बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु जो हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है।
3: हाँ,
1: तो फिर उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं?
3: कैल्शियम की टेबलेट्स आती हैं और दवाई आती है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसका यूज करते हैं।
1: तो आपके यहाँ पशु चिकित्सक आता है?
3: हाँ जी, हाँ जी, और नियमित रूप से आते हैं,
1: वो जांच करते हैं।
3: जी जी बिल्कुल,
1: वो दवा। जो हमारे युवा साथी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं,

0: उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक में आए और अपने गांव की चीजें को शहर में लेकर जाएं, ताकि सभी को पता चले कि ऑर्गेनिक चीजें भी और हमारे गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में नहीं है, नहीं पहुंच पाती है। मार्केटिंग हमें अच्छे से करना चाहिए। तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग गांव की जो चीजें हैं वो मार्केट में लेकर जाएं।
0: मार्केट
1: जी जी।
0: अच्छा, अब इसको और किस ऊंचाई तक ले जाने की योजना है आपकी?
1: अभी हम जैसे सीहोर और भोपाल में काम कर रहे हैं, तो इसको हम ये चाहते हैं कि और 5-7 शहरों में हम इसको बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
2: तन भैयारो, आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती एक ऐसी आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें फसल को एक नियंत्रित और ढके भय वातावरण जैसे कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस में उगाव जाते हैं, जिसे के पौधन पे अत्यधिक ठंड, तेज धूप, बारिश, कीट और रोगन को बुरो प्रभाव ना पड़े और उन्हें बचाव जा सके। संरक्षित खेती को लाभ है कि जिस साल भर इमें हम बिना मौसम के कोई भी फसल या सब्जी फल उगा सकते हैं, ठंडी में पाले से, गर्मी में तेज धूप से और कीटन से फसल को बचा सकते हैं। सामान्य खेती की तुलना में 5-12% अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार हमें मिलत है। ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल से पानी और खाद की बहुत ही कम खपत होते। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें बेच के किसान भैया हरे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब यही डाले।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: सुभैया बिन्ना हरो, जे हतो हमाओ आज को किसान बानी कार्यक्रम। अब आज्ञा दो रीता बहन को। राम राम।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में संसद समीक्षा के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दे राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर

मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के IS इन्बादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S. सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने उड़ीसा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात उड़िया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए।
श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर

0: भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
1: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है जिसे आपने कहा वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करे तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने यह ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट पे इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
2: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर, and this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
0: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
1: कानून में, इस कानून में एक प्रोविजन

0: का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007,
1: जी
0: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं, वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा। और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती हैं, वो करीबन 0.5% होता है, कभी या 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं,
1: जी
0: जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है।
1: जी
0: तो सरकार ने यह सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने यह सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाए जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी,
1: जी
0: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये एमडीआर का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो
1: जी
0: मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
2: विल कंस्यूमर्स पे एनी यूपीआई चार्ज? नो, यूपीआई हैज रिमेन्ड फ्री फॉर कंस्यूमर्स सिंस इट्स लॉन्च एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू मेक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट विदाउट पेइंग अ ट्रांसैक्शन चार्ज। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर एमडीआर विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांसैक्शंस अबाउ अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय हैं इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
0: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं
1: जी।
0: वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है, जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
1: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
0: देखिए ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो
1: जी,
0: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इम्पोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
1: जी।
0: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तब उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में।
6: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत हमने चुना है फिल्म रिफ्यूजी से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द हैं जावेद अख्तर के और संगीत अन्नू मलिक का।

फिल्म रिफ्यूजी से आपने ये गीत सुना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द थे जावेद अख्तर के और इसमें संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं एक सूचना। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शिवानी पटेल से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर के FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म एयरलिफ्ट से। इस गीत को लिखा था कुमार ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत की इस कड़ी को अब यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। समाचार संध्या के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल

0: अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
6: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
6: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
7: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में

0: स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रूपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भरत व्यास की रचना थी ये और वसंत देसाई का संगीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई।

सावन को आने दो, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना यशुदास की आवाज़ में। शब्द थे पी पंकज के और इसमें संगीत दिया राजकमल ने।

फिल्म एक फूल दो माली से आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द थे प्रेम धवन के और संगीत रवि का। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रगीत को अब यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशा के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, महफिल समा में आज का मौजू है शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी हयात व खिदमात। सामईन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी सन 1480 में शहर बुरहानपुर में पैदा हुए। आबाई वतन शीराज हिंद जौनपुर था। शेख अली मुत्तकी की परवरिश नहायत ही नेक सालेह दीनदार माहौल में अपने वालिद के जेर आफियत हुई, जो कि उस इलाके के मारूफ आलिम दीन थे। लेकिन अभी शेख अली मुत्तकी 8 बरस के ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। लेकिन शेख ने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया की तमाम मुश्किलात का सामना पूरी कुव्वत और जवां मर्दी के साथ किया। लेकिन आप रात और दिन जाते बारी ताला से लौ लगाए रखते, जिसके नतीजे में आपको महसूस होने लगा कि ये दुनिया यकीनन एक रोज खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सूरज एक दिन जरूर गुरूब हो जाएगा। दुनिया दारुल अमल और आखरत दारुल जजा है। इस एहसास ने आपके जमीर और अंदरून को झिझोड़ कर रख दिया। फिर उन्होंने हिसामुद्दीन मुत्तकी के यहाँ मुल्तान में दरसो तदरीस और तरबियत बातनी में दिन गुजारे। फिर गुजरात वापस तशरीफ लाए और अहमदाबाद में इकामत पजीर हो गए। फिर रिश्ते इस दिवास से मुंसलिक हो गए। फिर अपनी अहलिया और दीगर अहले खानदान के साथ जिंदगी गुजारी। उस बीवी से एक बेटा भी हुआ जो लड़कपन में ही दारे फानी को कूच कर गया। फिर शेख अली मुत्तकी ने मदीने में सुकूनत इख्तियार की और मक्का चले गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू की आवाज में कव्वाली ईमा की रोशनी है मोहम्मद के शहर में समात फरमा रहे थे और कलाम था पयाम सईदी का। मक्का मौजमा पहुंचकर शेख अबुल हसन शाफी की खिदमत में हाजिर होकर मजीद इल्म शरीयत और तरीकत पाया और फिर शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद सखावी की खिदमत में रहकर सिलसिलाए आलिया कादरिया का खिरका हासिल किया और हदीस की सनद शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन हजज मक्की से हासिल की और मक्का मौजमा में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपने कंजुल उमाल नामी किताब मुदव्वन और मुरत्तब फरमाई। ये किताब आपका अजीम इल्मी और दीनी शाहकार है। साथ ही आपने अहादीस मुकर्ररा को छांट कर मुंतखिब कंजुल उमाल भी तहरीर फरमाई। इन किताबों को देखकर आपके शेख अबुल हसन शाफी ने फरमाया था कि इमाम सियूती ने जमउल जवामे लिखकर तमाम लोगों पर एहसान किया था, लेकिन शेख अली मुत्तकी ने कंजुल उमाल की तदवीन फरमा करके खुद उन पर

शामिल हो गए तो देख कर ये हाल बरहम अहले बातिल हो गए। अबू जहल बोला ये दीने हक जो बढ़ता जाएगा ला तो उज़्ज़ा का पुजारी कौन फिर कहलाएगा। कोई बोला तभी हक का जोर इब्ने अब्दुल्लाह का जब सर कलम हो जाएगा। सुनते ही ये बात गुस्से में उमर आगे बढ़े और की बरहना हाथ में तलवार तेवर पे चढ़े। बोले उज़्ज़ा की कसम खाना नहीं खाऊंगा मैं सर मोहम्मद।

ये उम्र बोले चला हूँ काटने अहमद का सर। फिर नईम उनसे ये बोले लो खबर कुछ घर की भी है मुसलमान, खुद तुम्हारे भी बहन और बहनोई घर बहन के पहुँचे। गुस्से में उमर ये सुनते ही दर पे जब पहुँचे सदा कुरान पढ़ने की सुनी।

मजहब अपना बदला है ये मुझको है खबर। ये कहा गुस्से में और दोनों को मारा इस कदर। छल्ली जख्मों से बदन था, खून से था जिस्म तर। ये बहन बोली तू चाहे हमको मारे जान से, जीते जी हम फिर नहीं सकते कभी ईमान से। उनका दिल थर्रा गया ये जोश ईमान देखकर। गर्क इबरत हो के ये हमशीरा से बोले उमर, तुम जो कुछ पढ़ती थी वो

0: हुस्न पहले ऐ उमर, आयते कुरान के पढ़ने की तमन्ना है अगर। हुस्न करके आयते कुरान उमर ने फिर पढ़ी, हो गए बेखुद वो ऐसी मस्ती बेहदत चढ़ी। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल मिटी दिल नूरे हक से भर गया। फिर उसी आलम में पहुंचे शाह बता तक उमर, और गिरे पाए नबी पर बादब बाचश्म तर। पढ़ लिया तौहीद का कलमा मुसलमान हो गए, शाहे बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए, शाहे बता पर उमर फारूक कुर्बान हो गए।
1: दोस्तों, अभी आप जानी बाबू कव्वाल की आवाज में कव्वाली हजरत उमर का वाकया समाअत फरमा रहे थे, और कलाम था शबाब मीनाई का। दोस्तों, शेख अली मुत्तकी नहायत बाअखलाक, साहिब मुरव्वत और बेहतरीन सीरत और शख्सियत के हामिल थे। आपकी शख्सियत नहायत पुरकशिश थी। आप अपने तमाम कामों को किताब व सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया करते थे। हर चीज को शरीयत की कसौटी और तराजू में तोलते। उनके शागिर्द खास अब्दुल वहाब मुत्तकी एक अजीब व गरीब किस्सा नकल करते हैं कि उनको एक दफा किसी वजीर ने दावत दी तो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। जब वजीर ने इसरार किया तो उनकी दावत को तीन शर्तों के साथ कबूल किया। पहली शर्त ये रखी कि वो जिस जगह चाहेंगे बैठेंगे। दूसरी शर्त ये रखी कि जो खाना अच्छा लगेगा खाएंगे। वो तीसरी शर्त ये रखी कि जब चाहें वापस आ जाएंगे। फिर शेख साहब ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ कल आते हैं। वजीर ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वो नहायत ही लजीज मुख्तलिफ असनाफ और अकसाम के खाने बनवाए। जब दावत का वक्त हुआ तो शेख तन्हा गए, किसी को भी साथ न लिया, और साथ ही अपनी थैली में रोटी के चंद टुकड़े रख लिए। जब वजीर के घर पहुँचे तो उसके दरवाजे पर एक कोने में बैठ गए। वजीर ने ख्वाहिश जाहिर की कि मकान में चले तो पहली शर्त को याद दिलाया। फिर फरमाया, जल्दी से दस्तरखान बिछा दो, मेरे पास वक्त नहीं। बेहतरीन अकसाम के खाने दस्तरखान पर परोसे गए। उन्होंने अपनी थैली से रोटी के टुकड़े निकाले और उनको बगैर दस्तरखान से कुछ लिए खाने लगे। वजीर ने इल्तिमास किया कि दस्तरखान से कुछ खाएं, तो फरमाया, मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मुआहिदा हो चुका है कि मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। फिर वजीर से जाने का कहा। वजीर ने कहा, थोड़ी देर बैठिए। तो तीसरी शर्त याद दिलाई कि जब चाहेंगे लौट जाएंगे। फिर वजीर को सलाम करके वहां से वापस आ गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल अजीज अहमद वारसी से कव्वाली समात फरमा रहे थे, ए खालिक आलम, और कलाम था नजीर अली अदील का। इस वाक़े से दोस्तों हमें नसीहत मिलती है कि जमाना कदीम में उलमा व सूफिया इकराम वजीरों बादशाहों की सोहबत से परहेज करते थे। शेख अली मुत्तकी ने भी अपनी पूरी जिंदगी जोहद व तकवा में गुजारी, न माल व दौलत की लालच, न नामो नमूद की चाह, इन्हीं सब चीजों से दूर शेख साहब अपनी जिंदगी बसर करते थे। खाने को किया गया इनकार इस बात की तरफ इशारा करता है कि खाना हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत है, लेकिन खाने की ज्यादती जरूरी नहीं। दौरे हाजिर में शादी बारातों और दूसरी तकारीब में खाने पर फिजूल खर्ची करना गैर जरूरी है।

मैंने। दोस्तों, अभी आप कव्वाल मास्टर हबीब निजामी से कव्वाली ए हसीना तुझे मशहूर किया मैंने समाअत फरमा रहे थे और कलाम था अनवर फर्रुखाबादी का। सामईन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी के असाज़ा की एक तवील फहरिस्त है। आपके तलामजा की भी बड़ी तादाद है जिन्होंने आपसे शर्फ व तलम्मुज़ हासिल किया। आप निहायत कसीर उल मुजाहिदा थे, पूरी उम्र ज़ोहद व तवक्कुल में गुजारी। आपका विसाल 2 जमादी उल आखिर 975 हिजरी सुबह सादिक के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और वहीं तदफीन की गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कहकशां सुनना न भूलें और अपने तासुरात और ख्यालात से हमें इस पते पर जरूर आगाह करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
3: डीसी चंद्रशेखर जी,
4: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
2: First supplementary, Dr. Lakshmikant.

0: क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
1: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
0: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीयूएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेदर, फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक्स और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
2: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
3: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रिंग प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, is there any losses, if it is there has it been measured, and I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and flood and renewable energy with respect to that. Thank you sir.
2: Honorable Minister,
0: maine sadasya ne jo prashn pucha hai wo is prashn se sambandhit nahi hai। ये जो प्रश्न है आपको मिलता है और इसे इसके संबंध में
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संबंधित जानकारी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर शिवानी पटेल से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन करना ना भूलें। उससे पहले एक बार और हम आपको फ़ोन नंबर बता दें 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। विविध भारती इंदौर के FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

दोस्तों, यू वार्निंग कार्यक्रम में हर बुधवार हम आपके लिए पेश करते हैं एक खास सेगमेंट जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और इस बार इस खास सेगमेंट में हम जो फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं वो है

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज की हमारी खास फिल्म है तिरंगा। तो दोस्तों, सुनना ना भूलिए हमारा खास सेगमेंट एक ही फिल्म से युवाणी कार्यक्रम में। याद रखिए 12 अगस्त शाम 5 बजे एक ही फिल्म से, फिल्म है तिरंगा।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार हम आपके लिए पेश करते हैं एक खास सेगमेंट जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और इस बार इस खास सेगमेंट में हम जो फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं वो है

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज की हमारी खास फिल्म है तिरंगा। तो दोस्तों, सुनना ना भूलिए हमारा खास सेगमेंट एक ही फिल्म से युवाणी कार्यक्रम में। याद रखिए 12 अगस्त शाम 5 बजे एक ही फिल्म से, फिल्म है तिरंगा।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनभावन।

0: मन भवन सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। श्रोताओं, आपके ढेर सारे पत्र आए हैं और सभी जगह सावन सावन सावन का जिक्र है, तो ये मन भवन सावन मन भवन हो चुका है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत आप ही की पसंद का।
1: आयो रे

बंधन फिल्म से ये गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने, और इसकी फरमाइश भेजी आप सब ने छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से, रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिक्कू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। साथ ही हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल, साथ में है रामनिवास अग्रवाल। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार। कृष्णभाग कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता है नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, राजिया, जुनैद, अलीना, आयत, मुआज, मंसूरी। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। श्रोता आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये अगला गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म भूमिका से, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाज़ में। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और जिनकी फरमाइश पर ये गीत आपने सुना वो हैं कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही इसी गीत की फरमाइश हमें आई शाजापुर से, भेजने वाले हैं मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्तरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो भी इस गीत को सुनना चाहते थे। एक और फरमाइश आई मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से, भेजने वाले हैं प्रमेंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश, कामिनी चौहान, मंजू चौहान, राम कुमार यादव और मास्टर उत्तम श्रीवास्तव। एक और पत्र है हमारे पास वाशिम से, भेजने वाले हैं रविंद्र पवार, मीना श्रीकांत और एकनाथ काले।

गौहर कानपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म दो खिलाड़ी से। संगीत इस गीत में उषा खन्ना का था और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फरमाइश थी आप सबकी। मूसाखेड़ी इंदौर से प्रकाश सेन, सुनीता सेन, रवि कृष्णा सेन, इसी गीत की फरमाइश आई। राजपुर से घीसु तिलवारे, लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा एकता, अस्मिता सौरभ और कुणाल दिलवारे की। खरगोन से ध्रुवा सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े भी इस गीत को सुनना चाहते थे। भड़बूंजी जिला आगर से हमारे श्रोता हैं रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, पुष्पा, सुषमा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन, ओम प्रकाश और सभी साथी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सब संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या भी इस गीत को सुनना चाहते थे। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा और नीतू वैद्य भी इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी। श्रोताओ, आप ही के पसंद के ये नायाब खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन में। आइए सुनते हैं आप ही के पसंद का अगला गीत।

जिनकी पसंद पर आप ये गीत सुन रहे हैं वो हैं सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशी। गुमाश्ता नगर स्कीम 71 इंदौर से हमारे श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फंडसे, सीमा, सबीहा, फजल, पूजा, निनावा, सुषमा और स्मिता। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। एक और हमारे श्रोता हैं सोमानी नगर से बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और श्रीधा। संजय पंचोलिया हमारे श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं, साथ में है प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बमनिया, प्रमिला बमनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बमनिया परिवार। इसी के साथ कार्यक्रम मन भावन को अब यहीं विराम देते हैं। तो आप सबकी पसंद ने सावन को बना दिया मन भावन और मन भावन को बना दिया सावन। पत्र लिखते रहिए और इजाज़त दीजिए अमृता को। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय सरदेशमुख का गाया राग मालकोस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना विजय सरदेशमुख का गाया राग मालकौंस। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की

0: प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a probe by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhil Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
2: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news.